0: नमिता सेन गुप्ता के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति रस का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है। और अब सुनिए कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें फलों की तुड़ाई एवं सही रखरखाव के संदर्भ में। फल हमारे आहार का एक विशेष भाग है तथा इनका सेवन चिरकाल से होता आ रहा है। चाहे कोई पूजा पाठ हो या फिर कोई त्योहार, एक दूसरे को फलों की टोकरियां भेजकर बधाइयां देने का हमारे समाज में एक रिवाज है। फल हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें कई प्रकार के पोषक तत्व जो कि अन्य खाद्यान्नों में नहीं होते पाए जाते हैं। राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान हैदराबाद के अनुसार हमारे भोजन में लगभग 35 से 100 ग्राम फल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होने चाहिए, जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। शरीर को संतुलित बनाए रखने में ये सहायता करते हैं। फल कई प्रकार के खनिजों, लवणों, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा विटामिन्स के अच्छे स्रोत होते हैं

तथा हमें कई प्रकार की संक्रामक बीमारियों से बचाने में हमारी सहायता करते हैं। बीमारियों एवं कई प्रकार के विकारों से बचाने के कारण फलों को खाद्य आहार भी कहा जाता है। हमारे देश में विभिन्न पारिस्थितिक परिस्थितियां होने के कारण लगभग सभी फल एक या दूसरी जगह पर उगाए जाते हैं। जहां तक हमारे इन द्वीपों का सवाल है, फलोत्पादन विभिन्न द्वीपों में होने के कारण समय पर ये उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पाते तथा काफी मात्रा में खराब हो जाते हैं। इन द्वीपों के कई प्रकार के फल जैसे केला, आम, अनानास, अमरूद, सपोटा

0: भिन्न द्वीपों में होने के कारण समय पर ये उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पाते तथा काफी मात्रा में खराब हो जाते हैं। इन द्वीपों के कई प्रकार के फल जैसे केला, आम, अनानास, अमरूद, सपोटा, नींबू, पपीता आदि की काफी मांग बाजार में रहती है, लेकिन किसानों को इसका उतना फायदा नहीं हो पाता। चारों तरफ आरक्षित वनों के कारण फल उत्पादन का क्षेत्र बढ़ाना तो संभव नहीं, लेकिन बर्बादी, जो कि फल तोड़ने से लेकर उपभोक्ताओं द्वारा इस्तेमाल करने तक होती है, इसको तो कम किया ही जा सकता है। फलों को लंबे समय तक बिना खराब हुए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए इन पर जरा गौर करें। फलों को पूर्ण परिपक्व होने पर ही तोड़ें तथा तोड़ते समय ध्यान रहे कि धूप ज्यादा ना हो। सुबह का समय तोड़ाई के लिए सबसे उपयुक्त रहता है। फल तोड़ते समय नीचे किसी कठोर सतह पर नहीं गिरने चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो फल बाहर से तो ठीक दिखाई देगा, लेकिन अंदर के ऊतक टूटने की वजह से फलों का गुदा ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण भूरा या काला हो जाएगा और ऐसे फल जल्दी सड़ेंगे। तोड़ने के बाद फलों को किसी ठंडी व छायादार जगह पर रखें तथा उचित डिब्बों में फलों के आकार के वर्गीकरण के बाद ही बंद करके मंडी में भेजें। जो फल फट गए हों या जिन पर खरोंच वगैरह आ जाए, उन्हें बाकी फलों से अलग कर दें। परिवहन के दौरान ये भी ध्यान रखें कि डिब्बों के ऊपर डिब्बों का ज्यादा ढेर न लगाएं। ऐसा करने से नीचे वाले फल ज्यादा ऊष्मा के कारण बहुत जल्दी पककर खराब हो जाएंगे। गाड़ी को किसी शीट वगैरह से ढक लें ताकि बारिश व गर्मी दोनों का बुरा प्रभाव फलों पर ना पड़े। फलों के डिब्बों को गाड़ी पर चढ़ाते व उतारते समय ध्यान रहे कि इन्हें जोर से नीचे ना पटका जाए। ऐसा करने से भी आपस में रगड़कर फल खराब हो जाएंगे। मंडीकरण के लिए फलों को खुली हवादार व छाया वाली जगह पर ही रखें। खुली धूप में रखने से इनमें उपस्थित जल वाष्पित होकर फलों को सिकोड़ देगा तथा इनके आकार पर बुरा असर पड़ेगा। अगर गर्मी बहुत ज्यादा है तो साफ पानी फलों पर छिड़कते रहें, जिससे इनमें उपस्थित जल ना निकले। सड़े गले फलों को अच्छे फलों से दूर रखें। फलों को साफ जगहों पर ही हमें भंडारित करना चाहिए।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम एग्री टिप्स। सवेरे के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश

0: आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi yesterday chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the Economic Advisory Council discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, construction of buildings and sale and purchase of properties along the international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSF's Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern state. The Home Minister also directed an examination of land records of the last 5 years be conducted. Mr. Shah said frequent operations against drug and arms trafficking must be conducted and the entire chain of contributors to drug trafficking must be dealt with a ruthless approach. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar virtually handed over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal under the reconstruction program post-2015 earthquake after meeting with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi. The two leaders jointly launched the linkage between UPI India and National Payments Interface of Nepal for facilitating cross-border personal remittances. Both leaders also witnessed the exchange of a memorandum of understanding between Digital India Bhashini and Kathmandu University for co-creating the National Digital

एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप जाने के लिए आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा। दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा व दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा व दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप जाने के लिए आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप के लिए आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान अगले दिन प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत जाने के लिए कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा व कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा।

0: एमवी पिलोमिलो शहीद द्वीप के लिए कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा तथा कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी हडबे स्वराजद्वीप जाने के लिए कल 8 जून को सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराजद्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन के 11 श्री विजयपुरम से रवाना होगा। दोपहर 1 शहीद द्वीप से स्वराजद्वीप जाएगा व दोपहर बाद 2:30 पर स्वराजद्वीप से वापस श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। जलियानो का यात्रा कार्यक्रम समाप्त हुआ। इस समय सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष

नमस्कार श्रोताओं, इंद्रधनुष कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम का शीर्षक है रूप। श्रोताओं, एक प्रेमी अपनी प्रिय की सुंदरता और अदाओं की दिल खोलकर प्रशंसा कर रहा है। उसकी एक मुस्कान और मासूम अंदाज ने उसके दिल में प्यार की ऐसी भावना जगाती है कि वह हर पल उसी के ख्यालों में खोया रहता है।

एक प्रेमी अपनी प्रिय की सुंदरता को ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना मानकर उसकी प्रशंसा कर रहा है। उसका प्यार इतना गहरा है कि उसे अपनी प्रिय की छवि हर सुंदर चीज में दिखाई देती है और वही उसके जीवन का सहारा बन जाती है।

एक प्रेमी अपनी प्रिय के प्रति गहरे प्रेम और लगाव को व्यक्त कर रहा है। उसके लिए अपने प्रिय की मौजूदगी ही सबसे खास है और उसका दिल हर पल उसी के प्यार और साथ की चाह में डूबा रहता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इंद्रधनुष, प्रस्तुत कर रही थी के लक्ष्मी देवी। इस समय सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए रामचरित मानस गान की 262वीं कड़ी। गायक कलाकार है रंजना जोगलेकर और श्रीकांत पारगांवकर।

श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के अंतिम चरण में राम कथा का वो प्रसंग आता है जहां श्री राम और लक्ष्मण पंपा नामक सुंदर सरोवर के तीर पर पहुंचते हैं। गहरे सरोवर में रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं जिन पर मधुर स्वर में भौरे गुंजार कर रहे हैं। चक्रवाक, बगुलों तथा जल निवासी पक्षियों का समूह देखते ही बनता है। इसी सरोवर के आसपास मुनियों के आश्रम हैं जहां अनेक प्रकार के वृक्षों तथा लताओं ने अद्भुत सुषमा बिखेर रखी है। श्री राम तथा लक्ष्मण ने सरोवर के शीतल जल में स्नान किया और एक घने वृक्ष की छाया में दोनों भाई बैठ गए। वहां देवता तथा मुनियों ने उनकी स्तुति की। सीता हरण के कारण श्री राम के हृदय में विरह वेदना व्याप्त है, ऐसा सोचकर महर्षि नारद के मन में ये विचार उठा कि उन्हीं के शाप को स्वीकार करके श्री राम अनेक प्रकार के दुख उठा रहे हैं। इसी विचार में मग्न नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए प्रभु के

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान की 262वीं कड़ी। गायक कलाकार थे रंजना जोगलेकर और श्रीकांत पारगांवकर तथा संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। सवेरे के 6:40 हो चुके हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम वतन के गीत। इस कार्यक्रम के तहत आइए अब सुनते हैं कुछ देश गान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वतन के गीत कार्यक्रम। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम के बारे में कहा जाता है कि तेज हवा के चलते वायु की गति लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से रहेगी, जो बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 9 जून तक समुद्र में न जाएं। आज दोपहर तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ एक क्षेत्रों में गरज के साथ वर्षा होगी। तो ये थी मौसम की जानकारी।

और अब एक नजर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। आज सवेरे 7:15 पर आप सुनेंगे देश रागनी कार्यक्रम। ठीक इसी समय विविध भारती मुंबई से सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सवेरे 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम। सुबह 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में गायक होंगे अशोक खोसला। बाल जगत कार्यक्रम में सुबह 9 विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर आप जानकारी प्राप्त करेंगे तथा अमर शहीद बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि व खेल और हम पर चर्चाएं होंगी। सवेरे 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित भीमसेन जोशी का गायन आप सुनेंगे। सुबह 10 सुनिए लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दिन के 11 आप सुनेंगे कार्यक्रम मेरी पसंद। 11:30 पर आप चंद गजलों का आनंद ले पाएंगे। दोपहर 12 तेलुगु कार्यक्रम में आप सुनेंगे नाटक तथा पुराने फिल्मी गाने व विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर चर्चा की जाएगी। मलयालम कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर कुछ फिल्मी गाने आप सुनेंगे तथा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर चर्चा होगी। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकार होंगे गुलाम अली। घर संसार कार्यक्रम में दोपहर 1:30 पर बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस, विश्व महासागर दिवस पर चर्चाएं होंगी। साथ ही विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर दिव्या नारायण की वार्ता होगी। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर सभा का समापन होगा, जबकि FM 100.9

मेगाहर्ट्ज पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगा गीत लहरी कार्यक्रम के साथ। दोपहर बाद 3 बजे सुनिए एल्बम टाइम कार्यक्रम। दोपहर बाद 3:30 पर कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर चर्चा होगी और मूस गांव के सेंट थॉमस कैथेड्रल चर्च के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत भक्ति गीत आप सुनेंगे।

शाम 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे, 4:40 पर कार्यक्रमों का विवरण, शाम 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बाहरों की शाम, शाम 5 तमिल कार्यक्रम में नंजम मरपदले के तहत पुराने फिल्मी गाने सुनवाए जाएंगे, बांग्ला कार्यक्रम में शाम 5:30 पर सुविचार के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर चर्चा होगी तथा कुछ फिल्मी गाने आप सुनेंगे, संध्या 6 संगीत संगनी कार्यक्रम, 6:30 पर धरती के गीत कार्यक्रम में आप राजस्थानी लोकगीत सुनेंगे, 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं का समय रहेगा, 7:20 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीत, 7:30 पर युवानी के तहत लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा तथा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर चर्चा होगी, रात्रि 8:30 पर रोजगार समाचार और गौरवगान कार्यक्रम, रात 10 विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8 दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे, रात्रि 9 न्यूज एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर रूपको का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10 रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के कार्यक्रम में विद्वान MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे। सुबह के 6:55 होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 97% तथा न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 29.2 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय आज 4:54 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:42।

और अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान उड़ान संख्या 2397 आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और उड़ान संख्या 2396 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए वापसी उड़ान भरेगा आज दिन के 11:40 पर। तो ये थी उड़ान संबंधी जानकारी।

दिन के 11 बजे सुनिए कार्यक्रम मेरी पसंद। 11:30 पर आप चंद गजलों का आनंद ले पाएंगे।

सुगम संगीत के शौकीन श्रोताओं को हम बता दें कि आज दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे गुलाम अली को। घर संसार कार्यक्रम में दोपहर 1:30 पर बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस, विश्व महासागर दिवस पर चर्चाएं होंगी और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर दिव्य नारायण की वार्ता होगी।

श्रोताओं, आज सुबह 9 बजे बाल जगत कार्यक्रम में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर आप जानकारी प्राप्त करेंगे तथा अमर शहीद बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि व खेल और हम पर चर्चाएं होंगी।

0: आज शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम में निंजम मरुपदले के तहत पुराने फिल्मी गाने सुनवाए जाएंगे। वह राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर चर्चाएं होंगी। बांग्ला कार्यक्रम में शाम 5:30 पर सुविचार के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर चर्चा होगी तथा कुछ फिल्मी गाने आप सुनेंगे। जन सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक में वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि को और गति देने के उपायों पर विचार विमर्श किया। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती क्षेत्रों में वित्तीय गतिविधियों, भवन निर्माण और संपत्ति लेन देन पर कड़ी निगरानी के साथ तस्करी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में स्वच्छता जागरूकता के प्रति तीनों जिलों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन हुआ। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आगामी दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। सुबह के समाचारों के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आंकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमन में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। यह निर्देश श्री शाह की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान दिया गया। गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन

सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कलेक्टरों और जीएसटी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कृषि आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2026-27 के अंतर्गत किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत किसानों को कार्बन फाइबर टेलीस्कोपिक हार्वेस्टर की खरीद पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। यह लाभ प्रति किसान एक सेट तक सीमित होगा। यह पहल द्वीपों की उष्ण कटिबंधीय जलवायु को ध्यान में रखते हुए किसानों को आधुनिक और सुरक्षित कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। कार्बन फाइबर टेलीस्कोपिक हार्वेस्टर हल्का, टिकाऊ और जंगरोधी उपकरण है जिसका उपयोग विशेष रूप से ऊंचे पेड़ों की फसल काटने में किया जाता है। इसका टेलीस्कोपिक डिजाइन किसानों को जमीन से ही फसल काटने की सुविधा देता है जिससे पेड़ों पर चढ़ने के जोखिम को समाप्त किया जा सकता है। यह उपकरण समय और श्रम दोनों की बचत करता है। आवेदन पत्र नजदीकी कृषि उपडिपो या जोनल कृषि कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर, कृषि कार्यालय या टेलीफोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है स्वच्छ भारत अभियान और मौसम। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान 1-5 जून तक द्वीप समूह में आयोजित किया गया। यह अभियान ग्रामीण पंचायत निदेशालय द्वारा तीनों जिलों में संचालित किया गया जिसमें ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता, कचरा प्रबंधन इकाइयों का स्थल निरीक्षण एवं मूल्यांकन, ग्रामीण हितधारकों के साथ परामर्श, स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान, वृक्षारोपण कार्यक्रम तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 पर विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन शामिल रहा। अभियान के दौरान पंचायती राज संस्थानों, ग्रामीण समुदायों और सरकारी अधिकारियों ने भागीदारी की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर तथा राष्ट्रव्यापी अभियान एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत कृषि विभाग ने हैडो स्थित बागवानी केंद्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर कृषि निदेशक देवव्रत बसंतिया ने मसाला एवं फलदार पौधों का रोपण किया जो विभाग की पर्यावरण संरक्षण और सतत कृषि विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल नागरिकों को अपनी माताओं के सम्मान में एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित करती है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत शिक्षकों द्वारा आयोजित सीआरसी लेवल समर कैंप 2026 का समापन राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय श्री विजयपुरम में सम्पन्न हुआ। यह समर कैंप 2 मई से प्रारंभ हुआ था जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को अवकाश अवधि में अपनी प्रतिभा निखारने, नए कौशल सीखने और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। कैंप के दौरान विद्यार्थियों के लिए विविध गतिविधियों का आयोजन किया गया जिनमें नृत्य, संगीत, खेलकूद, बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण, योग तथा व्यक्तित्व विकास सत्र शामिल रहे। इन गतिविधियों के माध्यम से छात्रों में न केवल नए कौशल सीखे बल्कि आत्मविश्वास और सहभागिता की भावना भी विकसित की। समापन अवसर पर विद्यार्थियों ने अपने सीखे गए कौशलों का प्रदर्शन अभिभावकों एवं शिक्षकों के समक्ष किया जिससे उपस्थित लोगों ने सराहा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीआरसी समन्वयक अर्चना सिंह ने अपने संबोधन में विद्यालय और शिक्षकों के प्रयासों की सराहना की। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भारी वर्षा और तेज हवाओं के साथ आंधी की संभावना जताई गई है। पूर्वानुमान के अनुसार आज और कल द्वीप समूह के एकाध

0: स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 7 दिनों तक मछुआरों के लिए विशेष चेतावनी जारी की गई है। 10 जून तक अंडमान निकोबार तटवर्ती क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है। इसी कारण मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे इस अवधि में समुद्र में ना जाएं और तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक सतर्कता बरतें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के अंतर्गत संचालित अंडमान कॉलेज द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 8 UG पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इनमें विभिन्न विषय शामिल है। आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू होकर 28 जून तक चलेगी। आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल collegeadmission.andamannicobar.gov.in के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक में वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि को और गति देने के उपायों पर विचार विमर्श किया। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती क्षेत्रों में वित्तीय गतिविधियों, भवन निर्माण और संपत्ति लेन देन पर कड़ी निगरानी के साथ तस्करी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में स्वच्छता जागरूकता के प्रति 3 जिलों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन हुआ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आगामी दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:15 और 24 सेकंड हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम देश रागनी।

सुरों में बसी देशभक्ति, रागों में रचा राष्ट्र प्रेम से सजी भारत की आत्मा। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम देश रागनी में। श्रोताओं, जब कदम कदम पर धरती अपने नए रंग दिखाती है और जब हर दिशा से उठती बोली एक नई कहानी सुनाती है, जब भाषा, वेश और परंपराएं अलग अलग होकर भी एक ही सूत्र में बंध जाती है, तब उस संगम को हम भारत कहते हैं।

श्रोताओं, मिट्टी की खुशबू, दिलों में प्यार, यही पहचान है मेरे देश की हर बार। संस्कार, संस्कृति, अपनापन सारा, सच कहूँ तो ऐसा देश है मेरा।

ये देश बहादुर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का है। इस देश का यारो क्या कहना, भारत वीर और निडर जवानों का देश है। यहाँ के लोग हसमुख और जोशीले हैं। इस देश की बात की निराली है, जो मेहनत से जीते हैं और प्यार से दिल को जोड़ते हैं।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब सुनिए

गुड मॉर्निंग अंडमान सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज दिन है रविवार, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 17वीं तिथि और तारीख है 7 जून सन 2026। तो चलिए, गुड मॉर्निंग अंडमान के इस कार्यक्रम में आज आप चंद फिल्मी गाने सुनेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद इरफान की आवाज़ में एक विलन फिल्म का गाना, गीत व संगीत मिथुन का।

0: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
1: तेज बुखार, पसीना आना, सिर और शरीर में दर्द, उल्टी और कमजोरी,
2: ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं।
1: मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
2: समय पर इलाज न मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
1: सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।
2: घर और आसपास पानी जमा न होने दें।
1: पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें।
2: अगर बुखार हो तो रक्त की जाँच करवाएं।
1: अब हम कर सकते हैं।
2: अब हमें करना होगा।

0: मलेरिया को मिलकर हराना होगा।
1: स्वस्थ जीवन अपनाएं, मलेरिया को दूर भगाएं।
0: स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की मिली जुली आवाजों में वाह लाइफ हो तो ऐसी फिल्म का गाना, बोल समीर के, संगीत हिमेश रेशमिया का।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है।
4: कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
3: इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना।
5: टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है।
4: कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?

0: इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना।
1: टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।

अब लीजिए सुनिए कुमार सानू और अलीशा चेनाई की आवाजों में इश्क विश्क फिल्म का गाना, बोल समीर के संगीत, अनु मलिक का।

कुणाल गांजावाला के स्वर में अब लीजिए सुनिए प्यारे मोहन फिल्म का गीत। रचनाकार समीर तथा संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

0: Panama.
1: श्रोताओं, इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
4: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8

0: सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
2: कोलैबोरेट क्लोजली टू मेंटेन सिक्योरिटी,
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: फुल पोटेंशियल ऑफ आवर टाइम।
1: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
4: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
5: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है।

0: समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
1: इसराइल के हमले में दो महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
2: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संस्विदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
1: और अब अन्य खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
3: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
1: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
4: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोकसत्ते की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्व

0: उच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जन्मदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6 बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। होम मिनिस्टर अमित शाह कॉल्स फॉर शार्पर विजिल ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026 re-exam paper leak as false, warns of strict action against those spreading such content. West Bengal government to undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state. India hands over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal. International Air Transport Association says, India will be significant player to air traffic boom in Asia-Pacific region by 2044. And in football, India beat defending champions Bangladesh 3-1 to win SAF Women's Championship for record 6th time. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, constructions of buildings and sale and purchase of properties along the international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSF's Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern state. More from our correspondent.
3: Home Minister directed that an examination of land records of the last 5 years be conducted. Mr. Shah said frequent operations against drug and arms trafficking must be conducted and the entire chain of contributors to drug trafficking must be dealt with the ruthless approach. He said that ensuring financial discipline in the border districts is the responsibility of the states. Mr. Shah directed that collectors and GST officials be trained and that the Central Board of Direct Taxes, CBDT, conduct a survey on fake currency. Home Minister said that camps must be organized to train people living along the border to tackle the threats of narcotics and firearms and instructed that the presence of Patwari sentinels, local police and PSF personnel be ensured in these camps.
4: For Akashvani News, Shuman Bhattacharji, Agartala.
2: The National Testing Agency, or NTA, has refuted the claims circulating on social media and messaging platforms regarding an alleged leak, advance access or sale of the NEET UG 2026 re-examination question paper. In a social media post, NTA said that such content is the work of organized cheating rackets that prey on the anxiety of students and their families. A report.
5: The agency

श्रोताओं, अभी आपने सुना जफर गोरखपुरी की लिखी गजल, और अब सुनिए जिगर मुरादाबादी का कलाम, आवाज अशोक खोसला की ही है।

0: श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अशोक खोसला की आवाज़ में चंद खूबसूरत गज़लें। इस समय सुबह के 9 बजे हैं।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल YouWin पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.yuvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओं, अब नन्हे मुन्ने बच्चे अपना कार्यक्रम सुनेंगे बाल जगत।
4: बाल जगत कार्यक्रम सुनने वाले मेरे सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को आपकी रीता दीदी का बहुत सारा प्यार, और आज के कार्यक्रम में आप सभी का आपकी दीदी करती है बहुत सारा स्वागत। नन्हे दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हर साल 7 जून यानी कि आज ही के दिन एक बहुत ही स्पेशल डे मनाया जाता है। इसे कहते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। अब आप सोचेंगे ये क्या बला है। सीधे शब्दों में कहे तो सुरक्षित खाना सेहत का खजाना होता है। हमारा पेट एक छोटा सा जादुई बॉक्स है ना। अगर हम इसमें अच्छी और साफ चीजें डालें तो यह हमें सुपर हीरो जैसी ताकत देगा, है ना। लेकिन इसमें खराब चीजें चली गई तो पेट में कीटाणु राक्षस हमला कर देते हैं। इन कीटाणु राक्षसों से बचने के लिए हमारे पास बहुत सारे मंत्र हैं। आप जानना चाहोगे तो चलिए बारी बारी से जानते हैं कि एक कीटाणु राक्षस आखिर है कौन और हमारे शरीर में कैसे प्रवेश कर लेते हैं। खाना खाने से पहले और बाहर से खेलकर आने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से जरूर धोएं मेरे दोस्तों। जैसे ही आप हाथ धोते हैं सारे कीटाणु गायब हो जाते हैं। फल और सब्जियों को भी खाने से पहले पानी से अच्छी तरीके से धोना चाहिए जिससे कि फल सब्जी साफ हो जाए। साथ ही साथ पके हुए खाने को और कच्चे खाने को कभी एक साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। समझो कि पका हुआ खाना राजा है और कच्चा खाना सिपाही। दोनों के कमरे अलग अलग होने चाहिए ताकि कीटाणु एक जगह से दूसरी जगह ना भाग सके। और मम्मी जब खाने को गैस पर अच्छे से पकाती है तो वे असल में खाने को सुपर पावर दे रही होती है। तेज आंच पर पकने से खाने के अंदर छिपे सारे बुरे कीटाणु डिशम डिशम होकर खत्म हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा गर्म और ताजा खाना खाएं। अगर खाना बच जाए तो उसे बाहर खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। उसे फौरन फ्रिज की जादुई ठंडे महल में रखना चाहिए। ठंडी जगह पर कीटाणु सो जाते हैं और खाने को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। बाहर की खुली हुई चीजें, सड़क किनारे की चाट पकौड़ी देखने में मजेदार लगती है ना दोस्तों, लेकिन उसमें कीटाणु सेना छिपी होती है। इसीलिए घर का बना साफ और सुरक्षित खाना ही असली सुपर फूड है। तो आज से आप सब क्या बनोगे? फूड सेफ्टी सुपर हीरो। और हमेशा चुस्त और तंदुरुस्त रहिए। नन्ही दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ खाना बहुत ही जरूरी है। अगर पढ़ाई में अच्छा करना है तो अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा।
5: अंडा अंडा अंडा अंडा, हम सब ने देखा है, कई बार देखा है, पर क्या कभी सोचा है इस अंडे का क्या फंडा है? ये कितना गहरा है? इस टकले सर के अंदर एक ब्रेन सुनहरा है। ये कुछ समझाता है, ये कुछ सिखलाता है, जरा गौर से सुनिएगा, हम गा के सुनाता है।

दोस्तों, करते हैं शुरुआत कहानी के साथ बिरसा मुंडा जी की जीवनी की। हमारे देश के इतिहास में 9 जून बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवशाली दिन है। हम भारत के एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी और जननायक को याद कर रहे हैं, जिन्हें लोग प्यार से, श्रद्धा से धरती आबा यानी कि धरती पिता और भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं। बच्चों, एक छोटी सी कहानी आप सभी के लिए। जंगल का छोटा सा जादुई लड़का। बहुत पुरानी बात है, झारखंड के खूबसूरत जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था उल्हातू। वहां एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम था बिरसा। बिरसा दूसरे बच्चों की तरह ही था, लेकिन उसकी आंखें बहुत चमकीली थी और उसका दिल बहुत बड़ा था। उसे बांसुरी बजाना बहुत पसंद था। जब वह जंगल में बैठकर बांसुरी बजाता तो कहते हैं कि पेड़ पौधे झूमने लगते और हिरण तितलियां उनके पास आ जाती। वह प्रकृति से बहुत प्यार किया करते थे। जैसे जैसे बिरसा बड़े हुए, उन्होंने देखा कि कुछ अजीब और क्रूर लोग, जिन्हें अंग्रेज कहा जाता है, बंदूकें लेकर उनके सुंदर जंगलों में आ जाया करते थे। वे अंग्रेजों के राजा थे। उन्होंने आदिवासियों से कहा, यह जंगल हमारा है, यहाँ के पेड़ हमारे हैं और तुम्हें हमें टैक्स देना होगा। गांव के लोग बहुत डर गए और रोने लगे, लेकिन बिरसा नहीं डरा। उसने अपनी बांसुरी कमर में बांधी, हाथ में अपना तीर कमान उठाया और हवा में लहराते हुए बोला, यह जल, जंगल और जमीन हमारी माँ है, हम अपनी माँ को किसी के हवाले नहीं करेंगे। बिरसा ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, डरो मत, अगर हमारे इरादे पक्के हैं तो हम इन बंदूकों को भी हरा सकते हैं। बिरसा की बात सुनकर लोगों में इतनी हिम्मत आ गई कि वे उन्हें धरती आबा और भगवान कहने लगे। अंग्रेजों के पास बड़ी बड़ी बंदूकें थी और बिरसा के पास सिर्फ लकड़ी के तीर कमान। लेकिन जब लड़ाई हुई तो बिरसा और उसके साथियों ने ऐसे फुर्ती दिखाई कि अंग्रेज सेना दुम दबाकर भाग खड़ी हुई। बिरसा ने लगभग 24 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन वे मरकर भी अमर हो गए। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हमारी उम्र छोटी हो या हमारे पास साधन कम हो, अगर हम सही चीज के लिए हिम्मत से खड़े रहें तो हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो हमेशा डट कर हर कठिनाई का सामना करिए। प्यारे बच्चों, बिरसा मुंडा जी का जन्म झारखंड के उल्हातू गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। जब वे बड़े हो रहे थे तब हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज और जमींदार लोग हमारे आदिवासी भाई बहनों की जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, जंगलों को काट रहे थे और उन पर बहुत अत्याचार किया करते थे। बिरसा जी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने बचपन से ही ठान लिया था कि वे अपनी धरती, अपने जंगलों और अपने लोगों की रक्षा करेंगे। उन्होंने एक खूबसूरत सा नारा भी दिया, हमारे देश में हमारा राज होना चाहिए। बिरसा मुंडा जी के लगभग 20-22 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया, जिसने इतिहास में उलगुलान यानी महाक्रांतिकारी कहा जाता है। तीर कमान बना बंदूकें। सोचिए, एक तरफ अंग्रेजों की आधुनिक बंदूकें और सेना थी और दूसरी तरफ भगवान बिरसा मुंडा और उनके साथी के पास सिर्फ तीर कमान, भाले और उनका अटूट हौसला था। फिर भी उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया और कई लड़ाइयों में उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वे न सिर्फ एक योद्धा थे बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने लोगों को साफ सफाई से रहना सिखाया, अंधविश्वास से दूर रहने की सलाह दी और बीमार लोगों का इलाज किया। इसीलिए लोग उन्हें भगवान का रूप मानते थे। अंग्रेज सरकार बिरसा जी से इतना डर गई कि उन्होंने उन्हें पकड़ने के लिए इनाम रख दिया। आखिरकार उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया और रांची की जेल में डाल दिया गया। मात्र 24 साल की उम्र में जेल में रहस्यमयी परिस्थितियों में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और देश के लिए शहीद हो गए। उम्र चाहे छोटी हो या बड़ी, अगर हमारा इरादा पक्का है तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। जल, जंगल और जमीन हमारी असली संपत्ति है। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अपने समाज और देश के काम आना ही सबसे बड़ा धर्म है। आइए आज हम सब मिलकर भारत के वीर सपूत भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करें और उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। अगर आपके सामने कोई गलत काम हो रहा है या कोई किसी को सता रहा हो तो चुप मत रहिए, सही चीज के लिए खड़े होना सीखिए। बिरसा जी ने जंगलों की

रक्षा के लिए जान दे दी। हमें भी पेड़ लगानी चाहिए और पर्यावरण को बचाना चाहिए। देश और समाज के लिए अच्छा काम करने के लिए बड़े होने का इंतजार मत कीजिए। आप अभी से एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं।

जंगल जंगल घूम रहा था एक बालक मतवाला। जंगल जंगल घूम रहा था एक बालक मतवाला। हाथ में जिसके तीर कमान था, हाथ में जिसके तीर कमान था, मन में था उजियारा, मन में था उजियारा। नाम था उसका बिरसा, नाम था उसका बिरसा। सबका वह दुलारा था, सबका वह दुलारा था। अन्याय के आगे जो न झुका, अन्याय के आगे जो न झुका। वो भारत का सितारा था, वो भारत का सितारा था। जब अंग्रेज बंदूकें लेकर, जब अंग्रेज बंदूकें लेकर जंगलों को काटने आए, जंगलों को काटने आए। छीनने लगी वो जमीन सबकी, छीनने लगी वो जमीन सबकी। सबको वो डराने आए, सबको वो डराने आए। तब गरज उठा वो वीर युवा, तब गरज उठा वो वीर युवा। या जंगल जमीन हमारी है, या जंगल जमीन हमारी है। तीर कमान उठाए हाथ में, तीर कमान उठाए हाथ में। अब लड़ने की बारी है, अब लड़ने की बारी है। धरती आबा कहलाए वो, धरती आबा कहलाए वो। भगवान का उसको रूप मिला, भगवान का उसको रूप मिला। झुक जाए फिरंगी घुटनों पर, झुक जाए फिरंगी घुटनों पर। ऐसा देशभक्ति का सपूत मिला, ऐसा देशभक्ति का सपूत मिला। छोटा सा जीवन था उनका, छोटा सा जीवन था उनका। पर काम किया था भारी, पर काम किया था भारी। नमन करें हम वीर बिरसा को, नमन करें हम वीर बिरसा को। गाए महिमा दुनिया सारी, गाए महिमा दुनिया सारी।

नहीं दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा जी के जीवन, उनके दर्शन, उनके सिद्धांत बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उनका जीवन लोगों के लिए एक सबक है। उन्होंने छोटी सी उम्र में देश को आजादी दिलाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

नहीं दोस्तों, हवा में कुछ अलग ही जादू है ना आज। स्कूल की घंटी का कोई डर नहीं, सुबह जल्दी उठने की कोई टेंशन नहीं, और ना ही भारी भरकम स्कूल बैग का कोई बोझ। क्यों? क्योंकि आ गई है आपकी प्यारी छुट्टियाँ, और चल भी रही है ना आपकी छुट्टियाँ। लेकिन मेरे दोस्तों, छुट्टियों का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? देर तक सोना, टीवी देखना या मोबाइल पर वीडियो गेम खेलना, उफ ये तो बहुत बोरिंग है। छुट्टियों का असली मजा तो तब आता है जब हम बात करें हमारे आज के स्पेशल विषय की, जिसका नाम है खेल और हम। तो चलो, आज हम आपको एक ऐसे सफर में ले जाते हैं जहां खेलकूद कैसे सुपर डुपर हिट बन सकता है। दोस्तों,

अक्सर छुट्टियों में हम क्या क्या करते हैं? मम्मी पापा का मोबाइल ले लेते हैं, सोफे पर लेट जाते हैं और शुरू हो गए रील्स या गेम खेलने। लेकिन क्या आप जानते हो, इससे हमारा दिमाग थक जाता है और आंखें भी कमजोर हो जाती हैं। इन छुट्टियों में हमें एक नया चैलेंज लेना चाहिए, स्क्रीन टाइम कम, प्ले टाइम ज्यादा। छुट्टियों में सुबह स्कूल नहीं जाना होता, तो क्यों ना सुबह सुबह दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेला जाए या साइकिल रेस लगाई जाए। सुबह की ताजी धूप में हमें विटामिन डी मिलता है ना, जो हमारी हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बनाता है। दोपहर की धूप ढलते ही अपने दोस्तों की टोली बनाओ, क्रिकेट, फुटबॉल, पकड़म पकड़ाई या छुप छुपी, जो मन करे वो खेलो। जब शरीर से पसीना बहेगा तो चेहरे पर वो चमक आएगी, जो किसी मोबाइल फिल्टर से नहीं आ सकती। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी, दोपहर में तो बहुत तेज धूप होती है, तब क्या करें? अरे बाबा, खेल सिर्फ मैदान में ही नहीं होता है, घर के अंदर भी खेल खेले जा सकते हैं ना। दोपहर के समय जब बाहर बहुत धूप या बारिश हो रही हो, तो अपने भाई बहनों या मम्मी पापा के साथ बैठ जाओ और शुरू करो लीडो या कैरम या शतरंज। खेल सकते हैं आप, ये सिर्फ खेल नहीं, ये दिमाग के लिए जिम है। शतरंज खेलने से आपकी सोचने की शक्ति और प्लानिंग करने की क्षमता बढ़ जाती है। दोस्तों, जब आप अपनी नानी दादी या मम्मी पापा के साथ लूडो खेलते हैं और उनकी गोटी काटते हैं, तो बहुत मजा आता है ना, उसकी बात ही कुछ और है। इससे परिवार में प्यार तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ आप अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हो। इन छुट्टियों में क्यों ना कुछ ऐसा खेला जाए जो हमारे दादा दादी मम्मी पापा अपने बचपन में खेलते थे। चलिए आज आपको कुछ ऐसे खेल की सैर करवाते हैं। गिल्ली डंडा, कंचे और पिट्ठू, ये खेल एकाग्रता को बहुत मजबूत करते हैं। पत्थर पर निशाना लगाना या गिल्ली को हवा में उड़ाना, इसके लिए बहुत फोकस चाहिए होता है। दोस्तों, खो खो जैसे खेल हमारे शरीर का संतुलन और टीम के साथ तालमेल बिठाना सिखाते हैं। इन छुट्टियों में अपने मम्मी पापा से कहिए कि वो आपको अपने बचपन के खेल सिखाएं। देखना, वो भी बच्चे बन जाएंगे और आपको बहुत सारी पुरानी कहानियां भी सुनाएंगे। नन्हे मुन्ने दोस्तों, खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह हमें लाइफ की सबसे बड़ी बातें सिखाता है। छुट्टियों के इन दिनों में जब आप रोज खेलोगे, तो आप अनजाने में ही बहुत कुछ सीख रहे होंगे। खेल में हम अपनी बैट बॉल या खिलौने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, जिससे हमारी दोस्ती गहरी होती है। कभी कभी हम मैच हार जाते हैं, लेकिन खेल हमें सिखाता है कि उदास नहीं होना है। अगली सुबह एक नया मैच होगा, एक नई उम्मीद होगी। हार से सीखकर आगे बढ़ना ही तो असली खिलाड़ी की पहचान है।

हमारा समय यही समाप्त होता है दोस्तों, लेकिन जाने से पहले आप सभी को मुझसे एक वादा करना होगा। इन छुट्टियों में कोई भी बच्चा दिन भर टीवी या मोबाइल के सामने नहीं बैठेगा। हर बच्चा रोज कम से कम दो खेल खेलेगा, एक दोपहर में घर के अंदर और एक शाम को मैदानों में। याद रखिए, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब और सेहत भी रहेगा लाजवाब। अपनी छुट्टी खूब मजे से मनाइए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।

0: नन्हे मुन्ने बच्चे अपना कार्यक्रम सुन रहे थे बाल जगत। इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं।
1: ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है।
2: कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
1: इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना।
3: टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तेज बुखार, पसीना आना, सिर और शरीर में दर्द, उल्टी और कमजोरी,
5: ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं।
4: मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
5: समय पर इलाज न मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
4: सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।
5: घर और आसपास पानी जमा न होने दें।
4: पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें।
5: अगर बुखार हो तो रक्त की जाँच करवाएं।
4: अब हम कर सकते हैं।
5: अब हमें करना होगा।
4: मलेरिया को मिलकर हराना होगा।
5: स्वस्थ जीवन अपनाएं, मलेरिया को दूर भगाएं।
4: स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
1: ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है।
2: कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
1: इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना।
3: टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, और अब एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों 31 जुलाई 2026 तक की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। श्रोताओं, और अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसके तहत आज आप सुनने जा रहे हैं पंडित भीमसेन जोशी का गायन। इनके साथ संगत करने वाले कलाकार हैं तबले पर भरत कामत, हारमोनियम पर सुधीर नायक, और गायन पर साथ दिया है श्रीनिवास जोशी ने। तो सुनिए पंडित भीमसेन जोशी का गाया राग शुद्ध कल्याण। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल है एरी में पिया। पद्रुत रचना 3 ताल में निबद्ध है, बोल है मंदार भजोरे।

0: हेलो फरमाइश।
1: संगीत वो भाषा है जिसे हर दिल समझता है, जो कह न सके अल्फाज उसे गीत बयां करता है। नमस्कार श्रोताओं, सुरों की महफिल सजी है, दिलों की धड़कनों को गीतों के साथ मिला है। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। जिंदगी की भागदौड़ में कुछ पल संगीत के नाम कर दीजिए, क्योंकि अब आपकी पसंद, आपकी फरमाइश और आपके अपने संदेश पहुंचेंगे सीधे रेडियो तरंगों के माध्यम से हर दिल तक। तो उठाइए फोन, कीजिए हमसे बातचीत और सुनिए अपनी मनपसंद धुनें आपकी रेडियो सखी देवकी के साथ। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले नोट कर लीजिए हमारे नंबर्स। नंबर हैं 232540 और 232558। नंबर एक बार पुनः बता दूं, 2325400 और 2325588। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो हेलो फरमाइश, गुड मॉर्निंग।
0: जी। गुड मॉर्निंग, अपना शुभ नाम बता दीजिए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं ये भी बता दीजिए।
1: बेशक हमारे बच्चे आज के देवकी जी से बात हो रहा है ना।
0: जी जी बिल्कुल, अनूप जी बोल रहे हैं।
1: तो जी, कुछ रिश्तों को मुलाकात की जरूरत नहीं पड़ती,
0: आवाज़ ही काफ़ी है।
1: रिश्तों को मुलाकात की जरूरत नहीं पड़ती, बस याद करते ही चेहरे पर खुशी आ जाती है ना।
0: जी
1: तो आकाशवाणी विजयपुरम के सब दीवाने और दीवानियों को, यानी कि अनूप कुमार भट्टाचार्य का सब प्रेम नमस्कार, सलाम अलैकुम।
0: चलिए अनूप जी, और बाकी बातें करने से पहले जल्दी से बता दीजिए वो कौन सा गीत है जो आज इस प्रोग्राम में सुनेंगे आप।
1: फिल्म का नाम है

0: हेलो फरमाइश।
1: जय माता दी।
0: जय माता दी। आपका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से कॉल किया है आपने?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमहल बुगला से।
0: चलिए जल्दी से बता दीजिए वो कौन सा गीत है जो आज के इस कार्यक्रम में सुनेंगी?
1: जी मैडम, गीत भी बताएंगे और आपसे बातचीत करेंगे। आप कैसे हो और वहाँ का मौसम कैसा है मैडम?
0: अब तो यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है तो काफ़ी मौसम सुहाना हो चुका है, अच्छा लगता है बारिश में। और आपके वहाँ का क्या हाल है ज़रा बताइए।
1: जी मैडम, हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। कल बारिश हुई थी अच्छी खासी, रात को बोलते शाम को 3 बजे से बारिश थी, तो फिर 7 बजे तक बारिश हुई। उसके बाद में अब तो धूप है अच्छी खासी और आपका कार्यक्रम भी सुन रहा हूँ और धूप में कार्यक्रम आपका सुन रहा हूँ। इधर कॉल भी मिला रहा था मैडम, क्योंकि अंदर टावर नहीं रहता तो फिर धूप में खड़े होकर कॉल में आना पड़ता है मैडम।
0: अच्छा, चलिए तो कॉल लग चुका है, बता दीजिए कौन सा गीत सुनवाएं।
1: जी मैडम, फिल्म का नाम रहेगा जान तेरे नाम और गाने के बोले हम लाख सिपाही प्यार ना करिए गाना।
0: जान तेरे नाम फिल्म का गीत है।
1: जी, और आप भी ज्यादा दे तो मैं मित्रों को याद कर लूँ।
0: जरूर।
1: सबसे पहले तो आप है और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान भगवान सिंह परवान जी है, अभिनाथ जी है, रमेश प्रजापति जी है, गोल्डी भाई है, अमर साहब है, विमल है, अमल है, पूर्णिमा मैडम है और धर्मवीर जी दिल्ली से, और जितने लाइव आकाशवाणी विजयपुरम के श्रोताओं तक और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है न्यूज एयर ऐप और DTH के माध्यम से और तमाम श्रोता विजयपुरम के श्रोता के पास रेडियो पर।
0: चलिए तो हम सभी मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद वर्मा जी।
1: थैंक यू मैडम।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश। नमस्कार दीदी
0: जी, नमस्कार। आपका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से कॉल किया आपने?
1: जी। ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी। धन्यवाद
0: जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: दीदी।
0: कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं दीदी, बढ़िया हैं। और आज हमारे इधर बारिश हो गई दीदी, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है।
0: चलिए, तो इस प्यारे से मौसम में वो कौन सा गीत है जो सुनेंगे आप आज?
1: दीदी फिल्म का नाम है तुमसा नहीं देखा, गाने के बोल है वो हमसे खपा है, हम उनसे खपा है, मगर बात करने को जी चाहता है। धन्यवाद
0: चलिए, बहुत ही खूबसूरत गीत है, सुने
1: दीदी। कुछ दोस्तों को याद कर सकते हैं दीदी?
0: जरूर।
1: वो बहन पूर्णिमा जी हैं, गजराज लोधी जी, केसे सिंह राजपूत जी, भरत सिंह अलवा जी, राम बाबू शर्मा जी हैं, रमेश प्रजापति, मांगीलाल जी हैं, राकेश शिमला से, और बहन संगीता देवनाथ जी, असुरो देवनाथ जी, अविनाश सेली जी हैं, पूरन वर्मा जी हैं, और राकेश जी हैं, सारून अंसारी जी हैं, गोल्डी जी हैं, श्रीवा लोहट जी, धर्मवीर दादा दिल्ली से, लोकेन वर्मा जी हैं।
0: जी चलिए, तो इन सभी के साथ मिलकर सुनिएगा आपकी पसंद का ये गीत।
1: धन्यवाद दीदी।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश,
0: जी, नाम बताएंगे अपना?
1: मैं सोनीतपुर असम से अमल बसुमतारी बोल रहा हूँ। थैंक
0: जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जल्दी से बता दीजिए वो कौन सा गीत है,
1: यू।
0: सुनेंगे।
1: मिलन फिल्म का एक गाना सुनाने से हो जाएगा मैम?
0: अच्छा,
1: और
0: वैसे
1: मैं दोस्तों को जी
0: जरूर
1: मैं दोस्तों को
0: जरूर।
1: याद कर जी और मेरा दोस्त है साइकोन मुंडा है, रमेश पत्र, बिमल बसुमतारी, जोगेंद्र रोंगी और राकेश है, पूरन वर्मा है, गोल्डी है, राम नरेश है और भगवान सिंह परमार है, रमेश प्रजापति है और केसरी सिंह राजपूत, गजराज सिंह और दिल्ली से है धर्मवीर और हमारे कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार और शिवा लोहार और पूर्णिमा जी को भी और अविनाश शैली को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: चलिए, तो सभी के साथ मिलकर सुनेगा ये गीत। वैसे वहाँ का मौसम कैसा है इस वक्त?
1: मौसम तो अभी बहुत गर्मी मौसम चल रहा है, थोड़ी देर में धूप आता है, थोड़ी देर में बारिश आता है, इसे चलते रहते हैं। फिर भी बारिश अच्छी तरह से नहीं हो रहा है हमारे यहाँ पे, ज्यादा से गर्मी पड़ने लगा है,
0: अच्छा।
1: 40 डिग्री तक चलता है दिन भर और रात को
0: चलिए,
1: इसे 22-23 डिग्री सेल्सियस तक चलते रहते हैं।
0: अच्छा, तो काम काज क्या करते हैं आप?
1: काम तो खेती का काम करता है, अभी बारिश नहीं इसकी वजह से धान लगा नहीं पा रहा है और चाय का बगान है हमारा, चाय का बगान में थोड़ा काम चलते रहता है हमारा।
0: अच्छा, तो आज आज गए नहीं काम पर?
1: हाँ आज तो संडे है इसलिए चाय का बगान में काम नहीं होते हैं, मतलब तो संडे को पार्ट नहीं तोड़ते हैं, हम लोग में सिर्फ 6 डे काम करते हैं।
0: अच्छा, तो छुट्टी किस तरह से आप व्यतीत करते हैं? किस तरह से
1: तो
0: पूरा
1: पूरा
0: दिन निकालते हैं?
1: दिन तो कभी उसे पार्ट नहीं तो हमें इसे बागान से छुट्टी मिलता है ना, अलग काम करना पड़ता है। छुट्टी बोलने का तो कोई छुट्टी का काम नहीं रहता है हमारा किसान लोग का
0: हाँ।
1: जी।
0: चलिए, तो गाने सुनने के शौकीन भी हैं तो सुनवा रहे
1: हाँ हाँ
0: होंगे।
1: हाँ गाना तो चलते रहते हैं हर
0: जी
1: रोज
0: जी जी चलिए।
1: मोबाइल ऐप के माध्यम से। हाँ
0: हाँ, तो आपकी पसंद पर मिलन फिल्म का एक गीत हमारी ओर से सुनवा रहे हैं।
1: ओके ओके थैंक यू मैम।

0: श्रोता, इस वक्त आप सुन रहे हैं हमारा लाइव फोन इन फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रोग्राम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: हेलो फरमाइश।
2: নিকটবর্তী
3: SBI ব্রাঞ্চে এবং অ্যাক্টিভেট করুন SBI প্রিমিয়ার ব্যাংকিং।

0: terms and conditions apply.
1: ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश प्रोग्राम में। हेलो फरमाइश।
2: नमस्कार मैम जी।
1: जी नमस्कार, कौन कहां से बात कर रहे हैं?
2: मैं सेवन सिस्टर त्रिपुरा से आशुतोष दबनाथ बोल रहा हूँ।
1: आशुतोष जी कैसे हैं?
2: बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ, और पानी भी घिर रहा है, पानी का मजा ले रहा हूँ मैम जी।
1: चलिए, बारिश हो रही है मतलब?
2: बिल्कुल।
1: तो गर्मी से राहत मिली?
2: बहुत राहत मिली मैम जी, बारिश जब होता है बहुत राहत मिल जाता है, और बारिश बंद रहता है तो बहुत तकलीफ देता है गर्मी हम लोगों को।
1: सच है। और वैसे बारिश का मौसम आपको पसंद है?
2: बारिश पसंद नहीं मैम जी।
1: लेकिन जरूरी है ये।
2: जरूरी तो है। हाँ। बारिश बिना तो हम लोगों को जीना मुश्किल हो जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए बता दीजिए वो कौन सा गीत है जो सोच रखा है आज आपने सुनने के लिए।
2: तो मैम जी आज मुझे सुना दीजिए सुरों का मल्लिका लता जी के आवाज में गाना सुना दीजिए। इनका नाम है हेना। गाने का बोल के चिट्ठी है पंख लगा के, इस गाने को लिखा है मशहूर लिरिक्स नक्शलाल पुरी जी ने और रविंद्र जैन जी ने सुर से सजाई थे।
1: चलिए तो आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं हेना फिल्म का गीत।
2: आपका इजाजत हो तो दो चार दोस्तों को याद करता हूँ।
1: चलिए,
2: विजयपुरम से सुनेंगे सप्तमी विष्णु कुंडो जी और पूर्णिमा दीदी, दिल्ली से धर्मवीर जी और त्रिपुरा से अविनाश शैली जी, आसाम से प्रेमजीत चक्रवर्ती जी, पूरन वर्मा जी, राकेश भैया, भगवान सिंह पारमार, केसरी सिंह राजपूत, रामबाबू शर्मा, माहीलाल जी और मेरे धर्मपत्नी संगीता देवनाथ और आप भी सुनेंगे मैम जी।
1: चलिए तो आशुतोष जी आपने त्रिपुरा से कॉल किया, अब पूरी कर रहे हैं आपकी फरमाइश, सुनेगा।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, आपका नाम जानना चाहेंगे, जल्दी से बता दीजिए।
1: मेरा नाम लतीफ़ अहमद रैना, मैं कश्मीर सोनामर्ग से। जी
0: अच्छा, बहुत दूर से कॉल लगाया है आपने
1: फिल्म
0: जी। और जल्दी से बता दीजिए वो कौन सा गीत है जो सुनेंगे।
1: का नाम है अंदाज, कुमार
0: हाँ
1: सानू की आवाज़ में।
0: हाँ इसका कौन सा गीत सुनवाएं हम आपको।
1: कोई भी इसकी गाना से भी अच्छा है वो,
0: अच्छा,
1: मेरे पास।
0: अंदाज मूवी का कोई भी गीत सुनवाएं।
1: हाँ, मैडम
0: चलिए तो हम सब मिलकर सुने ये गीत।
1: मैडम आप कब आएगा यहाँ से सोनमर्ग कश्मीर?
0: ज़रूर, हाँ देखने की इच्छा तो है, जब समय मिलेगा तब हम ज़रूर जाएंगे वहाँ
1: जरूर आना आप मैडम,
0: जी।
1: यहाँ पे बहुत आजकल तो पर्यटक बहुत सारे आते हैं, यहाँ पे बहुत सारा रश रहता है यहाँ पे आज।
0: हाँ, अभी छुट्टियां भी चल रही हैं इसीलिए ज़्यादा
1: हाँ
0: से ज़्यादा
1: जी,
0: पर्यटक आ रहे हैं।
1: इसीलिए यहाँ पे पर्यटक इतनी आती है, लगभग मैडम हजारों में आते हैं, 3,000 कल से यहाँ पे सिकोर, यहाँ सोनमर्ग में।
0: चलिए, वैसे भी कश्मीर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र है और पर्यटन के लिए भी काफ़ी मशहूर है, और वैसे हमारा अंडमान भी पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी मशहूर है। कभी आपने देखा है इसे।
1: नहीं कभी नहीं, तो शौक तो है मगर आने का है शौक।
0: हाँ ठीक, वैसे ही हमें भी इच्छा है कि हम एक बार ज़रूर कश्मीर ज़रूर जाएं। और चलिए, आपसे बातें हुई अच्छा लगा, और अब पूरी कर रहे हैं आपकी फरमाइश, सुनिएगा।
1: शुक्रिया मैडम, धन्यवाद
0: ओके।
1: आपका।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग जी, आपका नाम जानना चाहेंगे।
1: मैं प्रेमजीत चक्रवर्ती बोल रहा हूँ, आज शाम सिबू डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ।
0: जी जी, कैसे हैं?
1: पहले तो आपको नमस्कार, और अभी प्रोग्राम सुन रहा था तो आपको मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार आपको भी और आपके परिवार को भी हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कैसे
1: आपको
0: हैं आप?
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत अच्छा है मैडम, आप कैसे हैं?
0: मैं भी अच्छी हूँ। मौसम का हाल बताइए, वहाँ कैसे चल रहा है
1: मौसम का हाल? तो अभी हमारा आसाम में बारिश हो रहा है, और अभी बारिश का लक्षण है, और बारिश नहीं हो रहा है, लक्षण है बारिश का।
0: अच्छा अच्छा,
1: काल बारिश गया। और आकाशवाणी टीवी जयपुर तो अभी न्यूज एन आई आर के माध्यम में बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोग्राम है।
0: चलिए शुक्रिया। और
1: आज मैं गाना सुना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है, और गाने का बोल ऐसे है कुमार शानू जी को आवाजों में, कितनी बड़ी बड़ी हो तुम,
0: आंख है भरी भरी। जी
1: बड़ी बड़ी हो तुम। और मैं दो चार मित्रों का नाम लेना चाहता हूँ मैडम, आप मेरे अनुमति दीजिए ना।

0: पहले तो अनुप कुमार भट्टाचार्य जी और आशुतोष देवता जी, जवाहरलाल वर्मा जी, रघुनाथ चली जी और सप्तमी विष्णु कुंडू जी और मिथुन चक्रवर्ती बेंगलुरु से और दिल्ली से बहुत अच्छा एक टुकाव है, उनका नाम है धर्मवीर प्रजापति जी। धर्मवीर प्रजापति जी को बहुत अच्छा लगता है उनको बातचीत, आकाशवाणी को बहुत पुराने टुका है ना जी देखिए उनको।
1: चलिए तो इन सभी अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुनेगा आपकी पसंद का ये गीत।

0: काम कैसे का मोनिका?
1: इतने दिनों बाद कॉल किया आपने, कैसी हैं आप?
0: जी बहुत, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
1: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बताइए क्या हाल है? शैतान खाड़ी में रहती है ना आप?
0: जी जी जी
1: जी कैसी
0: सब
1: हैं
0: ठीक है
1: मोनिका
0: मैडम।
1: जी आप?
0: हाँ जब सब ठीक है मैडम, आप
1: चलिए,
0: कैसी हैं?
1: नाश्ता वगैरह हो गया?
0: जी मैडम,
1: चलिए, और कौन सा गीत है जो आज सुनेंगे इस प्रोग्राम में?
0: मन मूवी का टाइटल सॉन्ग।
1: मन मूवी का टाइटल सॉन्ग सुनना है। चलिए मिलकर सुने।
0: जी अब मिलकर सुने, टाइम नहीं है ना।
1: चलिए, धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए।
0: थैंक यू मैडम।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम मेरी पसंद।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम मेरी पसंद में। प्यार एक ऐसा एहसास है जो जीवन को रंगों से भर देता है। कभी ये दिल की धड़कनों में मस्ता है, कभी आंखों की खामोशी बातों में, और कभी मीठे गीतों के रूप में हमारे साथ चलता है।

प्यार जब दिल को छू लेता है तो हर पल एक उत्सव सा लगने लगता है। आसमान के तारे भी जैसे खुशियों की बारात में शामिल हो जाते हैं और चांदनी अपनी उजली मुस्कान बिखेरने लगती है।

प्रेम केवल खूबसूरत चेहरों में नहीं बल्कि उस अपनत्व में बसता है जो किसी की आंखों में झलकता है। कभी कभी किसी की मासूम निगाहें ही दिल का सुकून बस जाती है।

कहा जाता है कि प्यार की शुरुआत अक्सर आंखों से होती है। दो नज़रें मिलती हैं और एक नई कहानी जन्म लेती है।

जब प्रेम हो तो वो किसी खूबसूरत सपने जैसा लगता है, एक ऐसा सपना जो धीरे धीरे हकीकत बन जाता है और जीवन में खुशियों के नए सिलसिले शुरू कर देता है।

इन्हीं मधुर गीतों के साथ मेरी पसंद कार्यक्रम का आज का सफ़र बस यहीं तक। आशा है आप सभी को ये संगीतमय सफ़र ज़रूर पसंद आया होगा। अब चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय दिन के 11:30 और 40 सेकंड हुए हैं। आप लीजिए सुनिए गज़ल। फनकार हैं अनुराधा पौडवाल, जसवंत सिंह, सोनू निगम, चंदन दास और भूपेंद्र सिंह। सबसे पहले सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये गज़ल।

अभी आप अनुराधा पौडवाल और जसवंत सिंह की गाई ये गजल सुन रहे थे। और अब लीजिए सुनिए सोनू निगम को, तू नहीं तो तेरी याद सही।

अभी आप भूपेंद्र सिंह को सुन रहे थे। गजल इस कार्यक्रम के तहत आज फनकार थे अनुराधा पौडवाल, जसवंत सिंह, सोनू निगम, चंदन दास और भूपेंद्र सिंह। इनकी आवाज़ों में अभी आपने चंद गज़लों का लुत्फ लिया। इसी के साथ ही कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

अभी आप सुन रहे थे मलयालम कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने को हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो के साथ नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे

0: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग की प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसायटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रूपये के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्नपत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए 2 ईरानी ड्रोन्स को रोका और नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान के अनुसार अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पुरुष क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 121वें ओवर में 8 विकेट पर 541 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुगम संगीत के कार्यक्रम के तहत आज फनकार थे गुलाम अली। आपने सुना इनकी गई चंद गजलें। इसी के साथ ही कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम घर संसार।

नमस्कार प्यारी बहनों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम घर संसार में, जिसे लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं, आपकी सखी, आपकी दोस्त रीमा अरोड़ा। तो चलिए आपके साथ इस सफ़र को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले सबसे पहले जानते हैं आज का हमारा सुविचार। आज का हमारा सुविचार कहता है कि अहंकार और संस्कार में बस इतना फर्क है कि अहंकार दूसरों को झुका कर खुश होता है। जी हाँ बहनों, अहंकार दूसरों को झुका कर खुश होता है, जबकि संस्कार स्वयं झुक कर खुश होता है। बहनों, हमें बचपन से ही संस्कार दिए जाते हैं कि हमेशा बड़ों के सामने हमें झुकना चाहिए, लेकिन कभी भी गलत के सामने ना झुके। गलत के सामने झुकना

आपका अहंकार नहीं, ये भी आपके संस्कार ही होते हैं। तो चलिए, इतना प्यारा सुविचार जानने के बाद अब यहाँ हम छोटा सा विराम लेते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज है 7 जून और आज के दिन को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के उपलक्ष में आइए हम सब मिलके वार्ता सुनते हैं दिव्या नारायण जी की, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से खाद्य सुरक्षा दिवस के बारे में बताया है।

नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के बारे में। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव से प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है, यह दिवस सरकारों, उत्पादकों और उपभोक्ताओं को खाद्य जनित जोखिमों को रोकने और उनसे निपटने के लिए प्रेरित करता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 अभियान का शुभ आरंभ इस वर्ष के विषय बोझ से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन के विवरण के साथ

गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नेतृत्व में इस वर्ष का अभियान खाद्य जनित रोगों को बोझ और उन्हें रोकने के लिए विज्ञान आधारित समाधानों पर प्रकाश डालने के लिए समर्पित है। क्या आप जानते हैं बहनों, भोजन से होने वाली बीमारियां आमतौर पर संक्रामक या विषैली होती हैं और अक्सर आंखों से दिखाई नहीं देती। ये दूषित भोजन या पानी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या रासायनिक पदार्थों के कारण होती है। खाद्य सुरक्षा या सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि खाद्य श्रृंखला के हर चरण में भोजन सुरक्षित रहे। उत्पादन से लेकर कटाई, प्रसंस्करण, भंडारण, वितरण, तैयारी और उपभोग तक। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मानव स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए सुरक्षित खाद्य प्रणाली की अनिवार्यता को उजागर करता है। बहनों, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दूषित भोजन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को रोकना और सभी लोगों को सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना है। तो आइए बहनों, जानते हैं आम जनता और लोगों के लिए इस दिवस और खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले, गंभीर बीमारियों से बचाव। दूषित भोजन खाने से हर साल लाखों लोग डायरिया, कैंसर और अन्य खाद्य जनित बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। यह दिवस लोगों को इन जोखिमों को पहचानने और उनसे बचने के लिए जागरूक करता है। कुपोषण की रोकथाम। पर्याप्त और पौष्टिक भोजन शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि समाज में कमजोर वर्गों जैसे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग तक संतुलित और पौष्टिक आहार पहुंचे। आर्थिक नुकसान से राहत। दूषित भोजन के कारण लोग बीमार पड़ते हैं, जिससे चिकित्सा का खर्च बढ़ता है और उत्पादकता प्रभावित होती है। सुरक्षित भोजन लोगों को आर्थिक बोझ से बचाता है। गुणवत्ता और मिलावट पर नियंत्रण। यह दिवस खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने तथा बाजार में मिलने वाले भोजन के लिए सख्त सुरक्षा मानक तय करने की आवश्यकता पर जोर देता है। इसमें हम महिलाओं की भूमिका सबसे अहम है, क्योंकि वे घर के खान पान और पोषण के मुख्य संचालक होती हैं। हम महिलाओं को अपने अधिकारों जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाला राशन के प्रति जागरूक होना चाहिए। खाना पकाने और सुरक्षित रखने के वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी होना जरूरी है, ताकि परिवार को बीमारियों से बचाया जा सके। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है। मिलावटी भोजन से बचने के लिए महिलाओं को साधारण घरेलू जांच जैसे हल्दी, मसाले, चाय पत्ती आदि में मिलावट पहचानने की जानकारी होनी चाहिए। महिलाओं को सशक्त बनाने और इस जागरूकता को फैलाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके अलावा हम महिलाओं को घर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक सावधानियां और उपाय बताए गए हैं। सबसे पहले आती है साफ सफाई। खाना बनाने या खाने से पहले और बाद में अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकेंड तक धोएं। रसोई के काउंटरटॉप, कटिंग बोर्ड और बर्तनों को हर बार इस्तेमाल के बाद गर्म और साबुन के पानी से साफ करें। किसी भी फल या कच्ची सब्जी को खाने या पकाने से पहले साफ पानी से अच्छी

तरह धोएं। इसके बाद क्रॉस कंटैमिनेशन से बचाव। कच्चे मांस, मछली और सब्जियों के लिए हमेशा अलग अलग कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल करें। पके हुए भोजन और कच्चे भोजन को हमेशा अलग अलग बर्तनों में ढककर फ्रिज में रखें ताकि कीटाणु ना फैलें। भोजन को हमेशा सुरक्षित आंतरिक तापमान करीब 70 डिग्री सेल्सियस या 165 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पकाएं ताकि बैक्टीरिया मर जाए। अंडों को तब तक पकाएं जब तक जर्दी ठोस ना हो जाए। कच्चे दूध को हमेशा उबाल कर ही इस्तेमाल करें। खराब होने वाले खाद्य पदार्थों या बचे हुए खाने को कमरे के तापमान पर 2 घंटे से ज़्यादा ना छोड़ें। तुरंत फ्रिज में रखें। जमे हुए भोजन को कभी भी रसोई काउंटर या कमरे के तापमान पर ना पिघलाएं। इसे हमेशा फ्रिज, ठंडे पानी या माइक्रोवेव में पिघलाएं। किसी भी पैकेट फूड का इस्तेमाल करने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर जांच लें। डिब्बा बंद भोजन अगर फूला हुआ या डेंटेड हो तो उसे फेंक दें। खाद्य पदार्थों को संभालते समय व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें। तो बहनों, खाद्य श्रृंखला में शामिल हर व्यक्ति, किसानों और उत्पादकों से लेकर परिवहनकर्ताओं, खुदरा विक्रेताओं, खाद्य निरीक्षकों, रसोइयों और उपभोक्ताओं तक संदूषण और बीमारी को रोकने के तरीकों पर विज्ञान और स्पष्ट मार्गदर्शन से लाभान्वित होता है। सरकारें आंकड़ों को लागत प्रभावी नीतियों और हस्तक्षेपों में बदल सकती है। खाद्य व्यवसाय अपनी प्रक्रियाओं में सुधार कर सकते हैं और व्यक्ति साक्ष्य आधारित निर्णय ले सकते हैं। तो बहनों, इस विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर हम इस बात पर जोर देते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े ही शक्ति है। भोजन में जोखिमों की व्यापकता, वितरण और प्रभाव को समझने से हम भोजन को यथासंभव सुरक्षित बना सकते हैं। धन्यवाद।

0: बहनों, हमें आशा है कि दिव्या नारायण जी की विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पे ये वार्ता आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने बहुत सी नई चीज़ों के बारे में ज़रूर जाना होगा, है ना। तो चलिए, बातें तो हो गई बहुत, अब यहाँ छोटा सा विराम लेते हुए हम सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा।
1: काका, हमने तो अपनी छोटी सी जिंदगी में बस इतना ही सीखा है कि जो पेट के अंदर गया वो अपना है, जो बाहर गया वो बाहर रहा, उसकी परवाह ही नहीं करनी चाहिए। जिंदगी तो पल दो पल की होती है। अरे लंगोटी में फांक खेलो और मौज उड़ाओ। हाँ।

बहनों, इस गीत के बाद चलिए अब जानकारियों की ओर लौट आते हैं। और आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ उस महासागर की दुनिया में जिससे हम सभी द्वीपवासी घिरे हुए हैं। हमारा व्यवसाय, मुख्य भूमि से हमारा जुड़ाव, हमारा खान पान और हमारे द्वीपों का पर्यावरण सभी महासागर से जुड़ा है। हमारे ये महासागरों ने हमारे ग्रह के 70% से ज़्यादा हिस्से को घेरा हुआ है और बहुत से जीव जंतुओं का ये जीवन का स्रोत है। कम से कम 50% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है ये महासागर और अधिकांश जैव विविधता का घर भी यही है। हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में भी इसकी बहुत भागीदारी है। लेकिन इतना सब देने के बाद भी इस महासागर को हम क्या दे रहे हैं बदले में? हम दे रहे हैं प्लास्टिक का कचरा, रसायन, रिसता हुआ तेल, भारी धातुएं, अत्यधिक मछली पकड़ना और जैव आक्रमण, जलवायु परिवर्तन और बढ़ता हुआ समुद्री खनन। हमारे इन सब देन के कारण आज 90% बड़ी मछलियों की आबादी खत्म होने को है। इसके अलावा बाकी पानी के जीवों का जीवन भी खतरे में है। आज महासागर का संरक्षण बहुत ज़रूरी है और इसी बात को ध्यान रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2009 में महासागर के महत्व और उससे जुड़े तथ्यों, खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिस्थितिकी संतुलन आदि की ओर राजनीति और सामाजिक ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व महासागर दिवस को हर साल 8 जून को मनाने की घोषणा की थी। आज की जो स्थिति है उसके चलते अगर हमने महासागर के बचाव में अपनी गति को नहीं बढ़ाया तो प्रकृति और मनुष्य के बीच बढ़ते असंतुलन का भुगतान हमें ही करना पड़ेगा। समुद्र में या उसके किनारों पर कचरा ना फेंककर, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाकर, कम पानी का प्रयोग करते हुए, अपवाह और अपशिष्ट जल को समुद्र में जाने से रोककर, विषैले रसायनों, कीटनाशकों और सफाई उत्पादों का सही तरीके से निपटान करके और कई और कदम उठाते हुए हम अपने महासागरों को बचा सकते हैं। बहनों, ये महासागर हमारी आजीविका चलाने के साथ साथ हमारा पोषण भी करते हैं और प्रकृति का एक खूबसूरत हिस्सा है। तो आइए मिलकर अपने प्रयासों से इसको साफ करें, इसको साफ रखें और इसका बचाव करें। बहनों, चलिए अब सागर की उन लहरों से धरती पर लौट आते हैं। वह धरती जहाँ हम सब रहते हैं, जो हमारा पोषण करती है और जहाँ हम अपने जीवन यापन के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हम सब अपना और अपने परिवार का पोषण

करने के लिए, उन्हें अच्छा जीवन शैली देने के लिए निरंतर श्रम करते रहते हैं। हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ले, स्वस्थ रहें और जीवन में आगे बढ़े, हम सबकी यही तमन्ना होती है। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ऐसा माहौल, ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाती, या तो आर्थिक समस्याएं या फिर ज्ञान की कमी के कारण कम उम्र में ही उन्हें काम में झोंक दिया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 50% बच्चे अपने बचपन के अधिकारों से वंचित हैं, और ये समस्या सदियों पुरानी है। बाल श्रम की समस्या वैश्विक स्तर पर देखने को मिलती है, लेकिन भारत की स्थिति जागरूकता के बाद भी खास अच्छी नहीं है। बच्चों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने के लिए हर वर्ष 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। बाल श्रम एक गंभीर समस्या है जो बच्चों से उनकी मासूमियत छीनती है, उन्हें उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करती है, शिक्षा का ज्ञान नहीं लेने देती, शारीरिक शोषण का उन्हें शिकार बनाती है, और साथ ही में उन्हें खतरनाक परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर भी करती है। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सभी ओर से उनका उत्पीड़न किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, कड़े नियमों को बनाकर और सख्ती से उनका पालन करके। और सबसे अहम, हम बड़े अगर बच्चों को श्रमिकों के रूप में स्वीकार करना छोड़ दें तो समस्या हल हो सकती है। श्रमिक माता पिता को सही सलाह देकर, मदद करके और बाल श्रम से होने वाली हानियों के बारे में अवगत करा के हम स्थिति को काबू कर सकते हैं। बहनों, हमारी एक सोच में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है कि एक श्रमिक का बच्चा सिर्फ श्रमिक ही बनेगा। सही शिक्षा, सुविधाएं और थोड़ी आर्थिक मदद से बच्चों को श्रमिक बनने से रोका जा सकता है। तो बहनों, वादा कीजिए कि आप बाल श्रम की इस सामाजिक कुरीति को जड़ से उखाड़ फेंकेंगी। जब हम साथ में चलेंगे तब हम इस बाल श्रम की समस्या को जड़ से खत्म कर सकेंगे और बच्चों को उनका बचपन लौटा सकेंगे।

तो बहनों, इसी गीत के साथ हमारा आज का घर संसार का ये अंक यहीं समाप्त होता है। तो अब आज के अंक से अपनी सखी, अपनी दोस्त रीमा अरोड़ा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने को हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सहअध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और यह मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
2: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
3: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम हैं।
4: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में

0: घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
1: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केश्म द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियेह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख

इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देशभर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6वें ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देशभर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है और अब चलते चलते आपको बता दें मौसम का हाल। मौसम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार द्वीपों में वर्षा हुई। जन सेवाओं को कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों में वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के चलते वायु की गति लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलेंगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती हैं। ऐसे में समुद्र अशांत रहेगा। मछुआरों को 10 जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। ये था मौसम का हाल।

इस समय दोपहर के 2:32 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम के 4 हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 पर FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

100.9 MHz पर यह है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम गीत लहरी।

कार्यक्रम में सबसे पहले सुनवा रहे हैं जाने कहां से आई फिल्म का ये गाना। राशिद अली की आवाज में ये गीत है, समीर की रचना है, साजिद वाजिद का संगीत है।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

अरुण दगा और मोहम्मद इरफान की आवाज़ों में अभी आपने सुना लम्हा फिल्म का ये गीत। सईद कादरी ने इस गाने को लिखा था और मिथुन ने इसकी धुन तैयार की थी। इसी के साथ ही गीत लहरी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

अभिजीत पोहनकर और आरती अंकलेकर की आवाजों में अभी आपने ये एल्बम गीत सुना। और अब लीजिए सुनिए जसविंदर नरोला को।

दोस्तों, जीवन एक मधुर सरगम है। कभी इसमें खुशियों के सुर गूंजते हैं तो कभी चुनौतियों की ताल सुनाई देती है। लेकिन जो हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं, वही जीवन की असली धुन को पहचान पाते हैं। मंजिल से ज्यादा खूबसूरत अक्सर सफर होता है, जो हर कदम पर जिंदगी का नया रंग दिखाता है।

सफर चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर साथ अच्छे लोगों का हो तो राहें आसान लगने लगती हैं। रिश्ते और यादें ही तो वो जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। इसे खूबसूरत एहसास के साथ अब पेश है अगला गीत।

दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हम ठहर कर पीछे मुड़कर देखते हैं। कुछ यादें मुस्कुराने की वजह बनती हैं, तो कुछ हमें मजबूत बनाने का सबक देती हैं।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे है। अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, तो चलिए सभा की शुरुआत करते हैं निकोबारी कार्यक्रम के साथ।
1: सिल्ला मंजी रोखर हमांग इंग्री तका इंगम मीडियम वे 438.6 मीटर हेकिंगम 684 किलोहर्ट्स लिखतिहांग इन रमागलनी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अन्नी निकुबारी प्रोग्राम तहांग
2: Kalevanu ya hong nyewang jekerel kui jekwa ala kwa kare at kale en min ka ngaya nehi ngam malaria in wahan lo ten ngam malaria in wahan lekta kinapa hi anta ngam eno felis jeng kan miso ke yehi at ilaren le ener ngay miho ay boy hangin wahawa unat majertanu wa yehi haro unha kira nup tayu ngamak nita si pati hi unat lena in kupi kui nup tenki hek in kukui nup handri yehi yehi wata ngam vanu ya ilaren ay hamuk tare ay jek ka mahamre miho in toho miho in ngaj hol rende ay lal ngam malaria in wa hakola alare ay juh ngam malaria lamak ते इनगम स्टेट हेल्थ सोसाइटी अन्गी मिनका तलोनी

0: Dekatnya Mayud, Salam, Saint Thomas Cathedral Church. Ihanyo dai menehang hi tehtin ke ka. Asalam terhai yan berita ke itu berita ki dalik tensin nga hangga teling hang tengamu hek inuri chang rong itu kasada itu fan ke rota lahara salam yan ngai.
1: श्रोताओं, अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 5वीं कड़ी।

Hello, dear friends. Welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Today's topic is all about technology for the social good. भविष्य में प्रौद्योगिकी की भूमिका और समाज पर इसका प्रभाव। कुछ ही दशकों में तकनीकी नवाचार ने मानव अस्तित्व के हर पहलू को बदल दिया है। पहिया के विकास से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सबसे हालिया प्रगति तक आधुनिक दुनिया के विकास में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तकनीकी प्रगति के परिणाम स्वरूप हमारा जीवन सरल, अधिक उत्पादक और अधिक परस्पर जुड़ा हुआ हो गया है। प्रौद्योगिकी के कई अच्छे सुधार लाए हैं, जिन्होंने हमारे जुड़ने के तरीके और पर्यावरण को बदल दिया है। सेलफोन से लेकर वर्चुअल रियलिटी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हालांकि समाज पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव हमेशा लाभकारी नहीं रहे हैं। इसके कई अनुकूल प्रभावों के बावजूद अवांछनीय दुष्प्रभाव भी उत्पन्न किए हैं, जिन्हें नियंत्रण किया जाना चाहिए। समाज पर टेक्नोलॉजी के कुछ नकारात्मक प्रभाव में तकनीकी निर्भरता, साइबर बुलिंग और कॉन्फिडेंशियलिटी का उल्लंघन शामिल है। स्वचालन और AI के बढ़ते उपयोग ने नौकरियों के नुकसान और बढ़ती आय के अंतर के बारे में चिंताएं पैदा की है। नए तकनीकों के निरंतर उभरने के कारण प्रौद्योगिकी का भविष्य और भी दिलचस्प प्रतीत होता है। हालांकि ये नवाचार स्वागत योग्य सुधार ला सकते हैं, लेकिन ये अवश्य है कि हम उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले जोखिम को नजरअंदाज न करें और उन्हें कम करने के उपाय करें। अगले वर्ष में हमारी दुनिया को परिभाषित करने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी विकासों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आधुनिक समाज पर प्रौद्योगिकी के उच्च और नकारात्मक प्रभाव पर भी चर्चा की जाएगी। वी ऑल नो अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आधुनिक तकनीक में सबसे आकर्षक विकास में से एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI है। आवाज पहचान, चित्र पहचान और NLP ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां AI ने बहुत प्रगति की। फिर भी AI के पास इससे कई ज्यादा आशाजनक अनुप्रयोग है। स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय और परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। इससे जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक गरीबी के खिलाफ लड़ाई में सहायता करने की भी क्षमता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT शब्द का अर्थ है आपस में जुड़े कंप्यूटिंग उपकरणों की वैश्विक प्रणाली, जो इंटरनेट के माध्यम से डेटा और निर्देशक को आदान प्रदान कर

सकता है। उद्योग से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले कई तरह के सेंसर इस श्रेणी में आते हैं। घर को संचलित बनाते हैं, ऊर्जा उपयोग को नियंत्रित करने और परिवहन में सुधार करने में IoT के साथ बहुत सफलता मिली है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स अब सर्वव्यापी है और यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले वर्ष में ये प्रवृत्ति और भी तेज होगी। पिछले कई वर्ष में संवर्धित और आभासी वास्तविकता दोनों में रुचि में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। आभासी वास्तविकता VR और संवर्धित वास्तविकता AR दोनों का लक्ष्य उपयोगकर्ता को भौतिक दुनिया पर आरोपित डिजिटल जानकारी के साथ बातचीत करने की अनुमति देती है। इन तकनीक का उपयोग मनोरंजन, शिक्षा और चिकित्सा उपचार आदि में किया जा सकता है। आभासी और संवर्धित वास्तविकता के अनुभवों के और भी अधिक यथार्थवादी और मनोरंजक होने की उम्मीद है। बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन नामक अंतर्निहित तकनीक पर निर्भर करता है। फिर भी ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग केवल क्रिप्टोकरेंसी के अलावा और भी कई कामों के लिए किया जा सकता है। ब्लॉकचेन एक विपरीत खाता है जो सुरक्षित डेटा भंडारण और हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन ऐसा कुछ उदाहरण है जो बहुत लाभ उठा सकते हैं। 5G के मोबाइल नेटवर्क मौजूदी चौथी पीढ़ी 4G नेटवर्क की तुलना में काफी तेज और कम धीमी होगी। 5G नेटवर्क द्वारा स्वायत्त वाहनें, स्मार्ट शहरें और टेली सर्जरी सहित नए उपयोग संभव हो सकते हैं। हालांकि दुनिया के कुछ क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के मुद्दे ने 5G नेटवर्क की शुरुआत को धीमी कर दिया है। क्वांटम कंप्यूटिंग के उपयोग के केवल 2 उदाहरण हैं, लेकिन अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्वांटम कंप्यूटिंग को कई तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ता है जिन्हें व्यापक रूप से अपनाने से पहले पार करना होगा। उद्योग और चिकित्सा में ऐसे नवाचार कोशिकाओं और जीवों का उपयोग करते हैं, उन्हें जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। चिकित्सा, खेती और यहाँ तक कि बिजली उत्पादन में भी ऐसे कई क्षेत्र में से कुछ है जो जैव प्रौद्योगिकी से लाभान्वित हो सकते हैं। जब नई बीमारी के उपचार और इलाज खोजे जाते हैं तो आने वाले वर्ष में जैव प्रौद्योगिकी लोगों के जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। रोबोटिक्स अनुसंधान का मुख्य ध्यान संचलित उपकरणों पर है जो कुछ निश्चित कार्य कर सकते हैं। निर्माण, चिकित्सा और परिवहन सहित और कई उद्योगों को रोबोटिक्स के उपयोग से लाभ हो सकता है। मानव जैसे संज्ञानात्मक क्षमताएं वाले मशीन बनाने में रोबोटिक्स के भविष्य की आशा है। क्लाउड में कंप्यूटिंग में डेटा के रिमोट सर्वर पर स्थानांतरित करना और उसे स्टोर करना शामिल है। क्लाउड कंप्यूटिंग द्वारा डेटा संग्रहण और पुनर्प्राप्ति को पूरी तरह से बदल दिया गया है। जैसे जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करने के लिए अधिक से अधिक प्रोग्राम और सेवाएं बनाई जा रही है, इसकी प्रमुखता केवल बढ़ाने का अनुमान है। उदाहरण के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग वॉइस असिस्टेंट और पिक्चर आइडेंटिफिकेशन सेवाएं जैसे AI प्रोग्राम चला सकती है। जैसे जैसे तकनीकी का प्रचलन बढ़ रहा है, साइबर सुरक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है। साइबर सुरक्षा कंप्यूटर और नेटवर्क को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से घुसपैठ से सुरक्षित रखने का अभ्यास है। साइबर खतरे को प्रचलन बताते हैं कि डेटा की सुरक्षा का महत्व और बढ़ेगा। संचार की उन्नति आधुनिक सभ्यता के लिए प्रौद्योगिकी के सबसे उल्लेखनीय लाभों में से एक है। तकनीकी प्रगति के कारण अब हम तुरंत और अधिक आसानी से संदेश भेजे और प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्लीकेशन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीकी की व्यापक उपलब्धता के कारण दुनिया भर के लोग एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। इसकी वजह से लोग अपने प्रियजनों के साथ संबंध बनाए रख सकते हैं, अपने सामाजिक दायरे का विस्तार कर सकते हैं और मूल्यों वाले समुदाय बना सकते हैं। इंटरनेट के आगमन के साथ पहले से दुर्गम ज्ञान अब हर किसी की पहुंच में है। इंटरनेट ने किसी के लिए भी कुछ ही माउस क्लिक के साथ नए विचार, प्रथाओं और दृष्टिकोणों से परिचित होना संभव बना दिया है। इसीलिए लोग अपने समय पर ज्ञान प्राप्त करने और अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में बेहतर सक्षम है। साथ ही इसे स्वास्थ्य, विज्ञान और राजनीति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ज्ञान के प्रसार में सहायता मिलती है, जिससे अधिक सुविज्ञ नागरिक बन पाए हैं। इन तकनीकों को व्यापक उपयोग के कई सकारात्मक

सकारात्मक परिणाम है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी है, जैसे कि तकनीकी पर निर्भरता, साइबर बुलिंग और निजता का उल्लंघन, जिन्हें संबोधित किया जाना है। बेहतर संचार, सूचना तक आसान पहुंच, अधिक उत्पादकता और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि तकनीक ने सभ्यता को कैसे लाभ पहुंचाया है। फिर भी प्रौद्योगिकी में रोजगार के अवसर को कम करने और आर्थिक असमानता को बढ़ाने की क्षमता है। ये महत्वपूर्ण है कि हम एक समाज के रूप में इन खतरों के बारे में जागरूक रहे और प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का आनंद लेते हुए उन्हें कम करने के लिए कदम उठाएं। आज के लिए बस इतना ही, अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत, नमस्कार। दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla, spice.lamhe.vanilla। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की पांचवी कड़ी सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:40 हुए हैं। अब सुनते हैं आज व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रम।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम होगा। बंगला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। शाम 6 बजे आप सुन सकते हैं महिलाओं की फरमाइश पर व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संगीत संगनी। धरती के गीत कार्यक्रम के तहत आज संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोकगीत। 6:45 पर वतन के गीत। 7:05 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाओं से अवगत कराया जाएगा शाम 7:15 पर। आज संध्या 7:20 पर आप सुन सकते हैं फिल्मी गीत। युवा दोस्तों के कार्यक्रम युवाणी का समय रहेगा 7:30 जिसमें आप लाइव फोन इन प्रोग्राम सुन सकते हैं। रात 8 बजे दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषीय कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग आप सुन पाएंगे। 8:30 पर रोजगार समाचार और चंद देशभक्ति गीत पेश किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के अलावा 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9 बजे News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान MSN मूर्ति का वायलिन वादन आप सुन सकते हैं जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे आप FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत भी सुन सकते हैं जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। रात 11 बजे मौसम की जानकारी के बाद हमारी स्थानीय सभा की समाप्ति होगी। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

आप सुनते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। 5:55 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम एग्री टिप्स, जिसमें कल जानकारी का विषय रहेगा बीन्स की खेती। 6:10 पर जलियानों का यात्रा

कार्यक्रम 6:15 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम इंद्रधनुष, जो केंद्रित होगा सागर शीर्षक पर। रामचरितमानस गान की 263वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी 6:30 पर। 6:40 पर समाचार वार्ता, वतन के गीत का समय रहेगा 6:45। मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 6:50 पर। 7:05 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन, 7:15 पर आप सुन सकते हैं फिल्मी देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश रागनी। इसी समय FM 100.9 MHz पर आप प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम सुन सकते हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल आप सुबह 8:30 पर पंकज उदास और अनुराधा पोडवाल गुलाम अली और चंदन दास का गायन होगा। 9:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहानी। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित मानस चक्रवर्ती का हिंदुस्तानी शैली में गायन आप सुन पाएंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल का समय रहेगा दिन में 10:00। 11:00 सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

11:30 पर कार्यक्रम होगा एक ही कलाकार, जिसमें आप सुनेंगे बिज्जू शाह के संगीत निर्देशन में तैयार गीत। 12 बजे सुनिए तेलुगु कार्यक्रम। 12:30 का समय रहेगा मलयालम कार्यक्रम का। 1:10 पर आप सुन सकते हैं समूहगान शिक्षा का कार्यक्रम आओ हिलमिल गाए। आपके नाम फिल्मी पैगाम व्हाट्सएप पर आधारित इस कार्यक्रम का समय रहेगा 1:30। दोपहर 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद हमारी स्थानीय सभा की समाप्ति होगी, लेकिन हम आपसे जुड़े रहेंगे FM 100.9 MHz पर हमारे लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड के साथ। 3:30 पर बोलते नगमों का कार्यक्रम होगा, यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ। 4:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में कल फनकार होगी अनुराधा पोडवाल। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा शाम 4:40 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम आप सुन सकते हैं 4:45 पर। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम, 5:30 पर बंगला कार्यक्रम। शाम 6 बजे कृषि जगत कार्यक्रम में कल बातचीत होगी डॉक्टर जय सुंदर वैज्ञानिक से। बातचीत का विषय रहेगा मानसूनी बारिश में पहले से आर्थिकी उपाय। श्रोताओं, ये थे कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:45 हुए हैं। अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। इस कार्यक्रम में हमने सबसे पहला गीत लिया है न्याय अन्याय फिल्म से। आवाज़ अनुराधा पोडवाल और मंगल की, गीत रचना मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत आनंद मिलिंद का है।

इस समय आप सुन रहे हैं कुमार सानू, सुदेश और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में आंखें फिल्म का गीत। गीत रचना इंदिवर की है और संगीत बप्पी लहरी का।

श्रोताओं, अब सुनते हैं इस कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश। आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की, बोल समीर के और संगीत नदीम श्रवण का, और फिल्म है धरती पुत्र।

श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। श्रोताओं, अब समय है तमिल कार्यक्रम का।

0: तेज बुखार, पसीना आना, सिर और शरीर में दर्द, उल्टी और कमजोरी,
1: ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं।
0: मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
1: समय पर इलाज न मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
0: सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।
1: घर और आसपास पानी जमा न होने दें।
0: पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें।
1: अगर बुखार हो तो रक्त की जाँच करवाएं।
0: अब हम कर सकते हैं।
1: अब हमें करना होगा।
0: मलेरिया को मिलकर हराना होगा।
1: स्वस्थ जीवन अपनाएं, मलेरिया को दूर भगाएं।
0: स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6 बजे है और श्रोताओं, अब समय है व्हाट्सएप पर आधारित महिलाओं की फरमाइश पर फिल्मी गीतों के कार्यक्रम संगीत संगनी का।

नमस्कार दोस्तों, संगीत संगिनी कार्यक्रम में मैं मंजीत आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का है और इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं महिलाओं की फरमाइशों को। तो सखियों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने पसंद के गीत सुनने के लिए आप हमें व्हाट्सएप संदेश जरूर भेजें। संदेश भेजने के लिए हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर दोहरा रही हूँ, 9474234000। सखियों, संदेश भेजते समय अपना नाम और पता, फिल्म का नाम और गाने की बोल जरूर लिखें। हर रविवार इसी समय यानी संध्या 6 बजे हम आपकी फरमाइशों को संजोकर पेश करेंगे सखियों, आपका अपना कार्यक्रम संगीत संगनी।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सबसे पहले लेते हैं महाराष्ट्र से निर्मला की फरमाइश। इन्होंने जानवर फिल्म के इस गीत की फरमाइश की है।

श्रोताओं, अभी आप तरुणा चौहान की फरमाइश पर आराधना फिल्म का गीत सुन रहे थे। तरुणा चौहान ने इस गीत की फरमाइश की थी सदर बाजार राजस्थान से। अब सुनते हैं जोधपुर राजस्थान की मोहिनी राजपूत की फरमाइश पर सूरज फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमने ली है कैम्बलबे से परमजीत कौर की। इन्होंने पसंद किया है कुर्बानी फिल्म के इस गीत को।

बताओ, अब सुनते हैं इस कार्यक्रम की अंतिम पेशकश, ग्यारह चरमा से राजी नायर की फरमाइश पर। इन्होंने फरमाइश की है, क्या दिल ने कहा, फिल्म के इस गीत की।

इस गीत के साथ ही सखियों में आपकी फरमाइशी गीतों के सिलसिले को विराम देती हूँ। अगले रविवार संध्या 6 बजे हम आपके संदेशों के जरिए आपकी पसंद के गीत लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप संगीत संगनी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनते हैं राजस्थानी लोकगीत।

Ce sont les dieux de l'Olympique.

श्रोताओं, अभी आप धरती के गीत कार्यक्रम के तहत राजस्थानी लोकगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:45 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनते हैं चंद देशभक्ति गीत।

युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी का समय रहेगा 7:30, जिसमें आप लाइव फोन इन प्रोग्राम सुन पाएंगे। रात 8 बजे दिल्ली से प्रसारित सरकार की 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषीय कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं।

कल सुबह 7:15 पर आपके लिए पेश किया जाएगा फिल्मी देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश रागनी।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल आप सुन सकते हैं कल दिन में 10 बजे। 11:30 पर कार्यक्रम होगा एक ही कलाकार, जिसमें कल आप सुनेंगे विज्जू शाह के संगीत निर्देशन में तैयार गीत।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:05 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
4: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।

0: बन गया बजट?
1: हाँ
2: 5,000 बच गए।
0: तो नई साड़ी ले ले।
1: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
0: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
0: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने नागरिकों से स्वास्थ्य खानपान अपनाने तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग ने विनियमन 2026 पर होटल एवं रेस्तरां संचालकों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। श्री विजयपुरम में कैट की सर्किट बैठक कल से 19

मुख्य समाचार। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने नागरिकों से स्वास्थ्य खानपान अपनाने तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग ने विनियमन 2026 पर होटल एवं रेस्तरां संचालकों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। श्री विजयपुरम में कैट की सर्किट बैठक कल से 19 जून तक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी। और अंडमान निकोबार शतरंज संघ द्वारा राष्ट्रीय अंडर 7 शतरंज चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल का आयोजन किया गया।

सांध्य समाचारों के साथ मैं टी जयश्री। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और अच्छा भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खानपान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। अंडमान एवं निकोबार अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं द्वारा कल अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विनियमन 2026 के संबंध में होटल, बार एवं रेस्तरां संचालकों तथा होटल संघों के प्रतिनिधियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम फायर सर्विस ट्रेनिंग सेंटर के सम्मेलन कक्ष में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक अग्निशमन उमा शंकर ने की। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को विनियमन के प्रमुख प्रावधानों, वार्षिक स्वघोषणा, तृतीय पक्ष फायर ऑडिट तथा भवन स्वामियों एवं उपयोगकर्ताओं की जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक अग्निशमन ने कहा कि यह विनियमन भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जा चुका है और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद शीघ्र लागू होने की संभावना है। संवाद सत्र के दौरान हितधारकों ने अनुपालन प्रक्रिया, फायर ऑडिट और नियमों के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न प्रश्न एवं सुझाव प्रस्तुत किए, जिनका विस्तार से समाधान किया गया। कार्यक्रम में होटल, बार, रेस्तरां एवं होटल संघों के कुल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विश्व पर्यावरण दिवस तथा राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अपने कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विभाग, यूटी आत्मा एवं वन विभाग के सहयोग से पिछले दिनों द्वीप समूह के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों एवं पौधारोपण अभियान का आयोजन किया। दक्षिण अंडमान के बिडनाबाद एवं शोलदारी गांवों में किसानों को पर्यावरण संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में वैज्ञानिकों ने संतुलित उर्वरक उपयोग, प्राकृतिक खेती, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन तथा एकीकृत कीट प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं मध्योत्तर अंडमान के निम्बुडेरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में पौधारोपण अभियान चलाया गया तथा हरिनगर पंचायत के बिल्ली ग्राउंड में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विशेषज्ञों ने किसानों एवं स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती अपनाने, रसोई बगानों में सुरक्षित एवं पौष्टिक सब्जियों के उत्पादन तथा वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से जैविक अपशिष्टों के पुनर्चक्रण के लिए प्रेरित किया। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण तथा पर्यावरण सूचना जागरूकता क्षमता निर्माण और आजीविका कार्यक्रम केंद्र द्वारा हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव रवि होरो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथियों में प्रोफेसर नागेंद्र शर्मा, डॉक्टर जयसुंदर, प्रोफेसर एस कन्नन तथा बीबी बर्मन शामिल रहे। समारोह में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के प्रभारी निदेशक डॉक्टर सी शिवपेवरुमन ने मुख्य विषय हमारे भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरित जलवायु पर प्रकाश डाला। अतिथियों ने पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, जैव विविधता और मिशन लाइफ पर विचार रखे। कार्यक्रम में क्विज, चित्रकला, तटीय सफाई और रैली

आदि गतिविधियों के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, सर्किट बैठक और शतरंज। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा समाचार हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। श्री विजयपुरम में कैट की सर्किट बैठक कल से 19 जून तक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें न्यायिक सदस्य उर्मिता दत्ता सेन और प्रशासनिक सदस्य सुचितो कुमार दास मामलों की सुनवाई करेंगे। इस दौरान नए आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। जिन विभागों के मामले कैट में लंबित हैं, वे संबंधित दस्तावेजों के साथ सरकारी अधिवक्ता और पैनल अधिवक्ताओं से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही सभी विभाग अध्यक्षों से अपने नोडल अधिकारियों को सुनवाई की तारीख पर संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहने का निर्देश देने को कहा गया है। अंडमान निकोबार शतरंज संघ द्वारा आज ANCA केंद्र में अंडर 7 शतरंज चयन ट्रायल का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य आगामी 39वीं राष्ट्रीय अंडर 7 शतरंज चैंपियनशिप के लिए द्वीप समूह की टीम का चयन करना था। राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन 30 जून से 4 जुलाई तक नागपुर में होगा। कड़े मुकाबलों के बाद अंडर 7 बालक वर्ग में ACM नुहान सिद्दीक वीके ने प्रथम तथा कार्तिकेयन ए ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं अंडर 7 बालिका वर्ग में निहारिका डी प्रथम और साशा एस द्वितीय स्थान पर रही। चयनित खिलाड़ियों को 10 जून तक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपनी लिखित सहमति ANCA कार्यालय डेयरी फॉर्म में जमा करने के लिए कहा गया है। निर्धारित समय सीमा में सहमति नहीं मिलने की स्थिति में अवसर मेरिट सूची के अनुसार अगले पात्र खिलाड़ियों को प्रदान किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में सत्र 2026-27 में विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार प्रवेश के लिए collegeadmission.andamannicobar.gov.in पर लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। यह पोर्टल 20 जून तक खुला रहेगा। पात्रता मानदंडों के संबंध में विवरणिका और अन्य जानकारी भी CCAP पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। और अब मौसम। द्वीप समूह के एकाध स्थानों में आज हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 7 दिनों के दौरान द्वीप समूह के कई स्थानों पर गरज के साथ वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मौसम संबंधी पूर्वानुमान में 11 जून तक द्वीप समूह के एकाध स्थानों में भारी वर्षा होने की आशंका जताई गई है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मछुआरों को इस अवधि में समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। कृषकों को भी मौसम के प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक सावधानी बरतने और फसलों की सुरक्षा के लिए उचित प्रबंध करने की सलाह दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने नागरिकों से स्वस्थ खानपान अपनाने तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग ने विनियमन 2026 पर होटल एवं रेस्तरां संचालकों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। श्री विजयपुरम में कैट की सर्किट बैठक कल से 19 जून तक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी। और अंडमान निकोबार शतरंज संघ द्वारा राष्ट्रीय अंडर 7 शतरंज चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आगे सैलरी? नहीं झुमके
1: ना, पहले बचत,
0: पहले झुमके।
1: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
0: लेकिन झुमकों का क्या?
1: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:15 हुए। अब सुनते हैं मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं।

सबसे पहले सुनते हैं मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है, पर मछुआरों को चेतावनी दी जाती है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समुद्री तटों पर हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जिसके बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने की भी संभावना है। इसी कारण समुद्र काफ़ी अशांत रहेगा। मछुआरों को समुद्र में 9 तारीख तक न जाने की सलाह दी गई है। परसों तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनते हैं जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार MV रानीचंगा कल 8 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर जाएगा। इस जलयान की वापसी अगले दिन 9 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। 10 तारीख को सवेरे 7 बजे जलयान MV हटबे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर जाएगा। अगले दिन 11 तारीख को यह जलयान सवेरे 7 बजे डुगलीपुर से छूटेगा और उसी बंदरगाह होते हुए श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। MV स्ट्रेट आइलैंड 12 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डुगलीपुर के लिए रवाना होगा। अगले दिन 13 तारीख को सवेरे 7 बजे ये जलयान डुगलीपुर से छूटेगा और मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। मायाबंदर होते हुए डुगलीपुर जाने के लिए जलयान MV सेंटिनल 13 तारीख को संध्या 6:30 पर श्री विजयपुरम से अपनी यात्रा आरंभ करेगा। इस जलयान की वापसी अगले दिन 14 तारीख को दोपहर 2 बजे डिगलीपुर से उसी बंदरगाह होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कैंबल भी श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए 9 तारीख मंगलवार को सवेरे 8 बजे छूटेगा। उसी रात 9 बजे यह जलयान लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। इस जलयान की श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए अगली यात्रा 12 तारीख को रात 9 बजे होगी। अगले दिन 13 तारीख को दिन में 10 बजे ये जलयान लिटिल अंडमान से छूटकर श्री विजयपुरम जाएगा। MV सेंटिनल 11 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए रवाना होगा। उसी रात 8 बजे ये जलयान लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। जलयान सिंधु 14 तारीख को सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान जाएगा। वापसी उसी रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कालीघाट कल यानी 8 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान होते हुए कार्निकोबार के लिए रवाना होगा। अगले दिन 9 तारीख को दिन में 12 बजे ये जलयान कार्निकोबार से सीधे श्री विजयपुरम के लिए अपनी यात्रा आरंभ करेगा। 11 तारीख को सवेरे 7 बजे यही जलयान MV कालीघाट श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान कार्निकोबार चौरा तरासा कचाल नानकौरी माकाचुआ और अफराबी होते हुए कैंबल बे के लिए अपनी यात्रा आरंभ करेगा। इस जलयान की वापसी 15 तारीख को प्रातः 5 बजे इन्हीं बंदरगाहों से होते हुए कैंबल बे से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV सेंटिनल 25 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान लिटिल अंडमान कार्निकोबार चौरा तरासा कचाल नानकौरी माकाचुआ और अफराबी होते हुए कैंबल बे जाएगा। 28 तारीख को रात 8:30 पर यह जलयान कैंबल बे से छूटेगा और इन्हीं बंदरगाहों से होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। जलयान सिंधु 9 तारीख मंगलवार को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से नानकौरी होते हुए कैंबल बे जाएगा। 11 तारीख को सवेरे 8 बजे यह जलयान कैंबल बे से नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। इस जलयान की अगली यात्रा 16 तारीख को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से नानकौरी होते हुए कैंबल बे के लिए होगी।

तारीख को सुबह 8 बजे एजलियान कैंपल वे से छूटेगा और उसी बंदरगाह होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। ये था जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। अब सुनते हैं जनसूचनाएं। गैर कानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है। 112-03192-232-100, 03192-233-077 और 03192-232-400। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। ये थी जनसूचनाएं। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:20 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनते हैं फिल्मी गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिर हेरा फेरी फिल्म का गीत, आवाजें हिमेश रेशमिया और तुलसी कुमार की। गीत रचना समीर की है और संगीत भी हिमेश रेशमिया का है।

श्रोताओं, आप सुनते हैं प्रसन्न जोशी के संगीत के लिखे बोल को, आवाजें दी हैं आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा ने। इस गीत को हमने लिया है आंखें फिल्म से।

श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लाइव फोन इन कार्यक्रम युवाणी के तहत।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 7 जून है और आज के दिन को पूरे विश्व में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन के महत्व के प्रति जागरूक करना है। असुरक्षित भोजन कई प्रकार की बीमारियों का कारण बन सकता है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यह दिवस हमें भोजन के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और उपयोग के दौरान स्वच्छता एवं सुरक्षा मानकों का पालन करने की प्रेरणा देता है। खाद्य सुरक्षा केवल स्वास्थ्य का ही नहीं, बल्कि सतत विकास और खाद्य सुरक्षा व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण आधार है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के दिन से जुड़ी कुछ खास बातें। तो चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे आज के इस लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स में।

0: दोस्तों, हमारे आज के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमें कॉल करें इन नंबरों पर 2325 40 और 2325 58, और हमारा STD कोड है 031 92। तो चलिए दोस्तों, अब लेते हैं अपना पहला कॉल। हेलो म्यूजिक लवर्स।
1: हेलो म्यूजिक लवर्स, सर जी को राधे राधे।
0: हेलो जी, नमस्कार, आपका नाम?
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ सर, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: जी केसरी जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया सर, और आप?
0: जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बताइए, आज का आपका दिन कैसा गया?
1: बहुत बढ़िया गया आज का
0: जी। और आपका काम कैसे चल रहा है?
1: काम तो सर बढ़िया चल रहा है, अभी फिलहाल में थोड़ी गर्मियाँ तेज थी तो काम उतना ही किया, थोड़ा करके
0: जी।
1: अब तो मानसून आ गए हैं, हल्की फुल्की बारिश भी होने लगी है और बदल हो जाते हैं तो थोड़ा
0: जी जी
1: तापमान में थोड़ा सुधार है
0: जी तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मूवी का नाम है पति पत्नी और तबाही
0: जी। और ये गीत
1: तेरी मोहब्बत
0: जी
1: मेरी जवानी,
0: और ये गीत आप किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: ये हमारे राम बाबू शर्मा जी हैं, गजराज लोधी जी, मांगीलाल चंदे जी, भगवान सिंह परमार जी, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, अविनाश जी, आशुतोष जी, संगीता देवनाथ जी, और विजयपुरम से पूर्णिमा जी, पूर्णिमा दीदी हैं स्कूल 9 से, और आपके लिए भी।
0: ठीक है केसरी जी, चलिए अब हम सुनवाते हैं आपको आपका ये मनचाहा गीत।

0: हेलो म्यूजिक लवर्स।
1: जी सर जी, जय श्री महाकाल। नमस्कार सर जी, सेवा लोहर टेम्पी विदिशा से बात कर रहा हूँ सर आपसे।
0: जी नमस्कार आपको भी। तो बताइए आप काम क्या करते हैं?
1: सर जी एक्चुअली में मैं ब्लाइंड हूँ सर, और समाज सेवा के कार्यों में लगा रहता हूँ सर जी। जैसे कि पक्षियों को पानी रखना हो गया, दाना रखना हो गया, गाय को चारा रखना हो गया, पानी रखना हो गया, और वर्षा ऋतु

0: बचपन के लिए सभी को प्रेरित करना हो गया और वृक्ष भी लगाते हैं सर
1: जी। ये तो फिर आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं समाज के लिए
0: जी। सर
1: जी, तो आज हमारे कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: सर जी मूवी का नाम है कच्चे धागे, इसमें एक गाना रहेगा वो बरखुदा आसमान है क्या था। सर जी हमारे कुछ मित्र थे उनको याद करना चाहते हैं।
1: जी जरूर
0: जी, हमारे मित्र हैं पूरन वर्मा जी राजस्थान से, हमारे मित्र हैं पुरुषोत्तम कुमार जी भदरुआ से, हमारे मित्र हैं राकेश जी शिमला से, और हमारे मित्र हैं अविनाश जी त्रिपुरा से, और हमारे मित्र हैं भगवान सिंह परमार जी सीहोर मध्य प्रदेश से, और यहीं से हमारे मित्र रहेंगे रमेश प्रजापति जी और शांति संसार आप और तमाम सुनने वाले।
1: तो चलिए अब हम सुनवाते हैं आपको आपका ये मनचाहा गीत।
0: धन्यवाद सर।

0: हेलो म्यूजिक लवर्स
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: जी। नमस्कार, आपका नाम?
1: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम बाया, तहसील रायटी, जिला सीहोर, एमपी से।
0: जी रमेश जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, गर्मी के आनंद ले रहा हूँ। कुछ पानी भी बरस रहा है, धूप भी पड़ रही है।
0: जी, तो आपके वहाँ पानी अच्छे से आ रहा है अभी की अभी हल्की फुल्की ही
1: ना
0: बारिश हो रही है
1: हल्की फुल्की बारिश है अभी तो
0: जी? अभी तो मतलब आपके वहाँ पे मौसम मानसून पहुँचा नहीं है
1: जी, अभी मौसम नहीं आया।
0: जी, तो अभी तो गर्मी से छुटकारा मिल गया होगा
1: हाँ थोड़ा थोड़ा मिला है। हाँ
0: जी। तो आपको अभी मौसम कैसा लग रहा है? खुशनुमा हो गया होगा काफी
1: वो दिन में तो ज्यादा गर्मी रहती है, रात में थोड़ी ठंडक हो जाती है।
0: जी, तो मतलब थोड़ा आराम मिला है अभी गर्मी से।
1: जी। फिल्म
0: तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: का नाम है पत्थर के सनम। बता दूं क्या लाना, तुम लौट के आ जाना, एक छोटा सा नजराना पिया, याद रखोगे या भूल जाओगे, और दो चार मित्र

0: को याद कर लूँ क्या?
1: जी
0: ये शिवलवार विदिशा से है, संगीता जी है, पूनम जी है और पूर्णमा जी है, विजयपुरम से आशुतोष जी है, राकेश जी है शिमला से, विमल है असम से, भगवान सिंह परमार है, पूरन वर्मा जी गजवलो जी, केसरी सिंह राजपूत है और गोल्डी जी है।
1: जी। तो रमेश जी, अब हम सुनवाते हैं आपको आपका ये मनचाहा गीत।

0: हेलो म्यूजिक लवर्स,
1: जय माता दी।
0: जय माता दी।
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंशमहल बुकला से बात कर रहा हूँ सर। सर
0: जी पूरन जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हूँ, आप सुनाओ।
0: जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी सर, फिल्म का नाम रहेगा रेडियो। वो कल आकाशवाणी का स्थापना दिवस आ रहा है, तो
0: जी
1: उसी पर रेडियो के बारे में यही बोलना चाहूँगा कि हमारा आकाशवाणी 90 वर्ष का होने जा रहा है। तो ऐसे ही आकाशवाणी का और श्रोताओं का प्यार ऐसे बना रहे, और हमारे नए नए कार्यक्रम ऐसे ही और नए पुराने सभी कार्यक्रम।

0: निकलते रहे, यही कहना चाहूँगा सर।
1: जी तो आप हमारे सारे कार्यक्रम सुनते हैं?
0: जी सर, आपके कार्यक्रम सुनता हूँ, जो सुबह से मैं टोन का लेता हूँ, भक्ति संगीत का कार्यक्रम 5:30 बजे, 5:25 से आपका कार्यक्रम चालू होता है सर,
1: जी
0: उसी से, उसके बाद भक्ति संगीत आता है और डॉक्टर की बातें भी आती है, और जो भी कार्यक्रम आता है ना मैं सब सुनता रहता हूँ सर।
1: जी तो आज आपको कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: उसी पर एक देखिए, एक रेडियो रेडियो यह एक गाना है,
1: जी
0: और दो दो तीन मित्रों को याद कर लो आप,
1: जी जी जी
0: सबसे पहले तो आप है
1: जी
0: और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह परवान जी है, अविनाश जी है, रमेश प्रजापति जी है।
1: तो ठीक है पूरण जी, अब हम सुनवाते हैं आपको आपका ये मनचाहा गीत।

तो अगले रविवार भी हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमें कॉल करें इन नंबरों पर 2325 40 और 2325 58 और हमारा STD कोड है 03192। तो चलिए दोस्तों, अब दीजिए अपने दोस्त दीपक कुमार सिंह को अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे है। अभी आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित सरकार की 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषीय कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग।
1: This is Akashwani. In the special series, 12 years of the Modi government, now we bring you an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer is Niharika Bhuvania.
2: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। आज सुनिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
3: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण हुए भारत सरकार के 12 साल के कार्यकाल की, और इस कार्यकाल के दौरान हर उस सफलता की जिसने लगातार भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज की ये चर्चा स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत की वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय आपने हमारे लिए निकाला, हम इसके आभारी हैं।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: और सबसे पहले बात करते हैं कि 12 साल के इस कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने किस तरह के बदलाव, किस तरह के परिवर्तन देखे, और इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है?
4: देखिए, किसी भी देश के नागरिक को अगर समय से किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल जाती है तो उस नागरिक की क्षमता और उसके सामर्थ्य का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो सकता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकता उसके नागरिकों का स्वास्थ्य ही होना चाहिए, और भारत आज एक बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमने अपनी सरकार के 12 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन 2047 तक भारत कैसे एक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो, ये हमारा सपना है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है एक स्वस्थ भारत। और भारत की आबादी आप जानते हैं 146 करोड़ है। 146 करोड़ नागरिकों को स्वस्थ रखना ये कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये हमारा संकल्प, यानी हर नागरिक को हमें एक्सेसिबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करनी है। तो हमने अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव किया है, और मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने स्वास्थ्य को आज केवल बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो सबसे जरूरी कदम है कि हम बीमारियों की रोकथाम कर सकें, और इसीलिए आज अगर आप देखें तो हमारी जो सबसे प्राथमिक इकाई है, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसमें आज हम जो गैर संचारी रोग हैं, जैसे कि डायबिटीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, इसकी हम जांच कर रहे हैं ताकि समय रहते पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जा सके। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से मोटापे के खिलाफ अभियान चलाते हैं, या आम जनमानस को 10% तेल कम करने की अपील करते हैं, और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय ईट राइट इंडिया के तहत कहता है कि आप स्वच्छ खाएं, पौष्टिक खाएं, संतुलित खाएं, तेल, चीनी, नमक इन सब का सेवन कम करें, तो ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में बढ़े हुए कदम है। तो भारत आज इस पद्धति पर चल चुका है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ढांचा प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों स्तर पे हम इसको, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रहे हैं। कैसे एक आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला खर्च कम हो, इसकी चिंता हमने की है, और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आज कम हुए हैं, जिसमें आज मैं जन औषधि केंद्रों की चर्चा भी करूंगी, अमृत फार्मेसी का उल्लेख भी करूंगी। आज इन केंद्रों पर जो दवाएं हैं वो बाजार मूल्य से 50-90% तक कम दामों पर देश के आम नागरिक को उपलब्ध हैं। आप एक जिला अस्पताल में जाकर देखेंगी तो राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत एक आम आदमी को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। हम आज बड़े पैमाने पर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ई संजीवनी के माध्यम से आज दूर दराज के गांव में बैठे हुए एक सामान्य नागरिक को एक विशेषज्ञ चिकित्सक का निशुल्क परामर्श मिल रहा है। मेडिकल ड्रोन्स जैसे जो हमारे

0: प्रयोग हैं आज दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में क्रांति ला रहे हैं। तो भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य इन 12 वर्षों में बहुत तेजी से बदल चुका है।
1: अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। शायद हम उसी राह पर चल रहे हैं और उसी को मद्देनजर रखते हमारे ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं आज बखूबी काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की बात करते हैं और आयुष्मान डिजिटल मिशन की अब बात करते हैं। आयुष्मान भारत जो है उसे न केवल भारत बल्कि विश्व भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया गया है। तो आपके हिसाब से इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, पहली बात, और दूसरी बात, हर वर्ग के परिवार को इस मिशन ने, इस इनिशिएटिव ने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप
0: देखिए। भारत आज एक ऐसा देश है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने में अग्रणी है और हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसी पहल है जिसके तहत हम देश के अंदर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो आज मुझे कहते हो खुशी है कि

0: ऐसा देश है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने में अग्रणी है और हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसी पहल है जिसके तहत हम देश के अंदर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो आज मुझे कहते हो खुशी है कि भारत के हर नागरिक के लिए हम एक यूनिक डिजिटल आईडी क्रिएट कर रहे हैं जिसे हम आभा आईडी कहते हैं और देश के अंदर आज 90 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनका हमने ये यूनिक आभा आईडी क्रिएट कर दिया है। ये उनकी एक डिजिटल पहचान है और 100 करोड़ से ज्यादा जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो इन अकाउंट्स के साथ लिंकअप हो चुके हैं। अब एक आम नागरिक को इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगी। कभी भी हमें किसी डॉक्टर का परामर्श लेना है तो हम क्या करते हैं, आमतौर पे एक फाइल होती है, एक फोल्डर होता है, बहुत सारे उसमें दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे कागजात होते हैं, हमारे लैब रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे तमाम प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं और वो समय के साथ फोल्डर मोटा होता जाता है, बहुत सारे मेडिकल के कागजात का बंडल बन जाता है। और जीवन में जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो एक आम नागरिक क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह उस बड़े से फोल्डर को लेकर घूमता रहता है हर डॉक्टर के पास।
1: शायद कागज खो भी जाते हैं, मिलते नहीं,
0: और डॉक्टर्स के लिए बड़ी कठिनाई होती है, मरीज के लिए भी कठिनाई होती है। जब हम इस डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं तो जो भी हमारे ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपना एक आईडी बना लिया और उसके साथ अपने रिकॉर्ड्स को लिंकअप कर दिया, अब ऐसे नागरिक को वो पूरा पुलिंदा लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो देश के किसी भी कोने में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, वो सिर्फ डॉक्टर को अपनी सहमति प्रदान करेगा, डॉक्टर उसके अकाउंट से उसके जितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शंस, दवाएं, सब कुछ उसको एक्सेस करेगा, उसके आधार पे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को समझेगा और पेशेंट को अपना परामर्श दे सकता है। ई संजीवनी का जो नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है उसमें भी एक सामान्य गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिस डॉक्टर से बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर परामर्श कर रहा है वो भी उस डॉक्टर को बताएगा कि ये मेरा आभा आईडी है, उसे अपनी कंसेंट देगा, अपनी सहमति देगा और डॉक्टर के सामने उस पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हुई है, सुविधा हुई है और आज हमने जो ओपीडी है उसे भी QR कोड बेस्ड बना दिया है। यानी बड़े बड़े अस्पतालों में अगर आपको ओपीडी सर्विसेज लेनी है तो क्या होता था कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में घंटे खड़ा होना पड़ता था, आज ये करने की जरूरत नहीं है। आपको स्कैन एंड शेयर की एक सुविधा दे दी गई है, आप QR कोड स्कैन करिए, सेकेंड्स में आपका जो टोकन नंबर होगा वो जेनरेट हो जाएगा और आप आसानी से डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम नागरिकों के रिकॉर्ड्स तो बना ही रहे हैं, हमारी कोशिश है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी भी रजिस्ट्री हम तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें आम नागरिक के लिए और यहां तक कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सुविधाजनक और टाइम सेविंग होने जा रहा है।
1: यानी कि अब कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड का खो जाना नामुमकिन हो गया है और जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य सेवा हर तरीके से पहुंच पा रही है, परिपूर्ण हो पा रही है।
0: बिल्कुल,
1: और इसमें मेरा ख्याल है AI की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है आगे आने वाले समय में। तो AI और हेल्थ केयर का आज के टाइम में, आज के दौर में क्या रोल है?
0: देखिए, आजकल हम हर जगह एक शब्द सुनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सामान्य व्यक्ति सोचता है कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अभी कुछ समय पहले फरवरी में हमने देखा हमारे देश ने एक बहुत बड़ा AI इंडिया इम्पैक्ट समिट किया और दुनिया के तमाम देशों से लोग आए, बहुत सारे प्रतिभागी आए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन से लेकर हर जगह हो रहा है। लेकिन हेल्थ केयर में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और भारत जैसे देश में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि हमारे देश की आबादी 146 करोड़ है और इतनी बड़ी आबादी में हमें ये भी देखना है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे दुर्गम आदिवासी दूर दराज के इलाके हैं जहां पहुंचने में बहुत कठिनाई है, जहां शायद हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या अन्य जो हमारा मेडिकल स्टाफ होता है उसकी शॉर्टेज है। और इसके साथ हमारे पास एक दोहरा भार है, यानी हमारे पास एक तरफ डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग जैसी तमाम गैर संचारी बीमारियां भी हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ TB, मलेरिया

0: या इस तरीके के रोग भी हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच में अगर हम कहते हैं कि हमने तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य तय कर दिया, यानी देश के हर एक नागरिक के पास किफायती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच होनी चाहिए, तो उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स यूज किए, जैसे हमने कोविड पैंडेमिक आया तो हमने कोविन का ऐप बना दिया, या आज हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं तो यूविन पोर्टल है हमारा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम उपयोग आज कर रहे हैं, तो हेल्थ का जो पूरा कॉन्टिन्यूम है, यानी आज बीमारियों की निगरानी करने से लेकर डिजीजेस के डिटेक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक, क्योर तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है।
1: सर्जरीज में भी इसकी काफी बिल्कुल उपलब्धि है,
0: और डॉक्टर्स को ये काफी हद तक मदद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल इमेजेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिनको एनालाइज करने में एआई टूल्स का उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, अभी हमने सघन टीबी अभियान चलाया अपने देश के अंदर, 2024 में हमने दिसंबर अंत में शुरू किया स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पर देश के अंदर की। उसमें हमने एआई ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरेस का उपयोग किया। उसका लाभ हमें ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो शायद समाज में छिपे रह जाते कि जिनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया है लेकिन लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, हमने बड़े पैमाने पर ऐसे केसेस की पहचान की। तो एआई सपोर्टेड, एआई ड्रिवन हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का आज हम उपयोग कर रहे हैं, जिससे बड़ी तेजी से हम मरीजों की स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क है, ई संजीवनी, अब ई संजीवनी पे आप समझिए कि एक मरीज डॉक्टर से वर्चुअल परामर्श कर रहा है। अब अगर डॉक्टर ऐसे तमाम पेशेंट से, हर एक पेशेंट से बैठकर पूछेगा कि आप अपने ये सिम्टम बताओ, ये बताओ, तो ये एक रेपिटेटिव एक्सरसाइज होगी, डॉक्टर को भी कठिनाई होगी। अब यहां पे एआई कैसे मदद करता है कि एआई टूल्स के माध्यम से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठाया है, उसके पास कोई रोगी आता है, वो उसका एक स्टैंडर्डाइज पेशेंट फॉर्म भरवा देता है, पेशेंट के सारे लक्षण उसमें कैद हो जाते हैं, एआई टूल्स की मदद से पेशेंट की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकल के आ जाती है, पेशेंट को किस स्पेशलिस्ट को रेफर करना है इसके रिकमेंडेशन आ जाते हैं। तो अगर एक सीएचओ को यह तय करना है कि इस समय हमारे पास 4-5 स्पेशलिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं लाइव, तो क्या एआई की रिकमेंडेशन आती है कि पेशेंट को के लक्षण के आधार पे इस स्पेशलिस्ट से कनेक्ट किया जाए, तो पेशेंट को तुरंत कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहां पे डॉक्टर का समय बचता है, मरीज का समय बचता है, और हमारा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा लोगों को केटर कर पाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बहुत तेजी से उपयोग देश में हो रहा है, और जिम्मेदारी के साथ हो रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा है, जवाबदेही के साथ हो रहा है।
1: यानी एआई के माध्यम से आपके पास समय के बचत के अलावा सही गाइडेंस, अप्रोप्रिएट गाइडेंस भी मौजूद है, जो कि हेल्थ केयर के मिशन को और आगे लेकर जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: आज जो है भारत में 1,70,000 से ज्यादा आरोग्य मंदिर मौजूद हैं, जमीनी स्तर पर ये क्या बदलाव ला रहे हैं?
0: अब इनकी संख्या बढ़ गई है, 1,82,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को कैसे बदल कर रखा जाता है, ये कोई हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मॉडल को देखकर समझ सकता है। एक समय था कि हमारे देश में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो थे, यहां पे केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आज हमने ये तय किया कि बड़े अस्पतालों पर हमें भीड़ कैसे कम करनी है, और एक सामान्य नागरिक को उसके घर के नजदीक ही तमाम जरूरी सेवाएं कैसे देनी है। तो इसके लिए हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां पे आज हम 12 सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं। यानी आज व्यक्ति को अगर ईएनटी की जांच चाहिए तो वो भी वहां मिलेगी प्रारंभिक, उसको मौखिक जांच ओरल केयर के लिए चाहिए तो वहां मिलेगी, उसको न्यूट्रिशन वेलनेस की काउंसलिंग चाहिए, पोषण के संबंधित गाइडेंस चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, फर्स्ट लेवल इमरजेंसी ट्रॉमा केयर चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, मेंटल हेल्थ को लेकर जो प्रारंभिक एक स्क्रीनिंग होती है उसकी सुविधा भी वहां मिलेगी, और एनसीडी की स्क्रीनिंग जो आपको मैंने बताया कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे 30 वर्ष की उम्र से अधिक हर व्यक्ति की निशुल्क जांच हो रही है कैंसर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए। तो ये सारी 12 सर्विसेज आज उसे मिल रही हैं। तो एक आम व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियों के लिए किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ता।

0: और बड़े अस्पतालों पर भी बोझ कम होता है। और सुनकर आप खुश होंगे कि 540 करोड़ से ज्यादा जो फुटफॉल है वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हो चुका है, यानी लोगों का अब भरोसा भी बढ़ रहा है कि घर के नजदीक इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आयुष्मान आरोग्य मंदिर ला रहे हैं।
1: जब स्वास्थ्य की बात आती है तो शायद शुल्क जो है वो एक तनाव का कारण बन जाता है, लेकिन आज मेरे हिसाब से आरोग्य मंदिर उस तनाव को कम करने में भी काफी सक्षम और सफल हो रहे हैं।
0: बिल्कुल, हमारी सरकार जब आई तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, देश के अंदर आम नागरिक के स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च होता है, जो उसकी जेब से होने वाला खर्च है
1: जी,
0: वो जीडीपी का 64% हुआ करता था। हमने उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, सरकार के खर्च को बढ़ाया। आज स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का जो खर्च है बजट का 1,06,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है। और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मैंने आपको बताया, जन औषधि केंद्र से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लेकर तमाम ऐसे प्रयास हैं जिनके कारण ये जो 64% हुआ करता था आज घटकर 39% पर आ गया है। तो बहुत बड़ी राहत जनता को उसके जेब से होने वाले खर्च पर मिली है।
1: पिछले कुछ उत्तरों में बात करते वक्त आपने टीबी और कोविड-19 का भी जिक्र किया, तो आज टीबी के केसेस को कम करने में और मृत्यु दर कम करने में हम कितने सफल रहे हैं, और क्या इस क्षेत्र में ऐसी कोई चुनौती है जो अभी भी हमारे सामने खड़ी हो?
0: देखिए, टीबी के संबंध में मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया हवा से फैलता है, एयरबॉर्न है, यानी कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित है टीबी के बैक्टीरिया से तो उसके बातचीत करने से, खांसने से, छींकने से, बोलने से, ये जो बैक्टीरिया होता है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हवा में प्रवेश कर जाता है, और दूसरा कोई भी व्यक्ति यदि उसे इनहेल कर रहे तो वो बैक्टीरिया उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो टीबी में सबसे बड़ा संकट ये है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है, और भारत देश की आबादी बहुत ज्यादा है, सघन है, ऐसे में टीबी मुक्त भारत एक बहुत कठिन संकल्प है। लेकिन सरकार ने यह तय किया है कि हम टीबी की रोकथाम से लेकर टीबी की जांच से लेकर टीबी के उपचार तक हर काम करेंगे, और इसके लिए लगातार हम सघन अभियान भी चला रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हम जागरूकता फैला रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और जांच के जरिए बहुत सारे जो एसिम्टोमैटिक केसेस हैं, जो सिम्टोमैटिक हैं उनके साथ साथ जो बिना लक्षण वाले हैं, लक्षण वाले दोनों की पहचान भी हो रही है। टीबी के जांच के लिए हमने अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को भी अब स्ट्रेंथन किया है, सुदृढ़ किया है। राज्यों को हम टीबी की स्क्रीनिंग के लिए जो तमाम डिवाइसेस की, इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं, और इसके साथ साथ टीबी में जो उपचार के लिए दवाओं की जरूरत है वो भी आज तमाम हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर उपलब्ध है। दवा के साथ साथ, जांच के साथ साथ एक जरूरी पक्ष ये भी है कि टीबी के रोगी में पोषण का अभाव होता है, इसलिए सरकार ने हर टीबी के मरीज को 1,000 रूपये की आर्थिक सहायता देने की भी प्रक्रिया प्रारंभ की है उसके पोषण के लिए। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे जन भागीदारी के माध्यम से निक्षय मित्र बन रहे हैं जो टीबी के रोगियों को गोद ले रहे हैं और उन्हें जो पोषण पोटली है वो निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। हमने टीबी पेशेंट्स के साथ साथ दायरा बढ़ाकर जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे उनके परिवारजन या उनके साथ रोज काम करने वाले लोग, जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी अब प्रिवेंटिव टीबी ट्रीटमेंट देना शुरू किया है। उन्हें भी हम न्यूट्रिशन बास्केट दे रहे हैं कि उनमें कहीं पोषण की कमी के कारण उन्हें ये टीबी का बैक्टीरिया ग्रसित ना कर ले। और चुनौती की जब आप बात करते हैं तो मैं समझती हूं कि बहुत बड़ी चुनौती अभी भी सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि टीबी के बारे में लोग आज बात करने से या किसी को हो जाता है तो एक झिझक रहती है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को यह भी अपील करना चाहूंगी कि टीबी एक ऐसा रोग है जिसको हराया जा सकता है, जिसका उपचार संभव है, और बहुत सारे ऐसे आज टीबी चैंपियंस हैं, टीबी विजेता हैं, जो हमारे तमाम कार्यक्रमों के मंच पे आके लोगों को बता रहे हैं कि कैसे वो टीबी से लड़कर जीते हैं। सरकार की तरफ से हर किस्म का सहयोग, पोषण से लेकर, दवा से लेकर, जांच तक सब कुछ निशुल्क उपलब्ध है। तो यदि किसी भी प्रकार की आपको शंका है तो आप जांच जरूर कराएं और उपचार का लाभ उठाएं।
1: बहुत खूब। और इसी के साथ साथ कोविड-19 की भी चर्चा करते हैं। कोविड-19 एक ऐसी महामारी थी जिसने

0: दुनिया की काया बिल्कुल बदल दी और उसी वक्त भारत ने अपने बुनियादी ढांचों को खासकर हेल्थ केयर के क्षेत्र में काफी मजबूत किया था। उस वक्त हमने क्या कदम उठाए थे जो आज भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो आज भी हमें इस राह पर हमें अपने हेल्थ केयर गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं।
1: देखिए, COVID-19 पैंडेमिक पूरी दुनिया के लिए एक शॉक था और पूरी दुनिया के लिए एक अहम सबक भी लेकर आया कि हमें अब अपने सिस्टम्स को, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, उन्हें रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है। यानी भविष्य की किसी भी ऐसी महामारी से, आपदा से निपटने के लिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स तैयार हों। तो भारत ने यह तय किया कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम जिला स्तर पे हैं या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे कहीं भी जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं, हम उनको फिक्सअप करेंगे। और इसके लिए हमने शुरुआत की नीचे से, यानी हमारे ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनको सुदृढ़ करते हुए हमने उसमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए। ये 64,000 करोड़ का पूरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हम लेके आए और इसके तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हमने इसलिए बनाए कि कोई भी गंभीर रोगी है तो उसे तुरंत उसके जिले में ही ये सुविधा मिल सके इलाज की। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी सेटअप किए ताकि जांच की जो सुविधा, जिसके लिए लोग परेशान हुए कोविड के दौरान, भविष्य में ऐसी कोई परिस्थितियां ना हो, जितने भी जांच होनी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होने हैं, वो सुविधा जिले में मौजूद हो। इसके साथ ही बीमारियों की निगरानी करना जरूरी है तो डिजीज के सर्वेलेंस सिस्टम्स को भी हमने सुदृढ़ किया। और एक बहुत बड़ी तैयारी हमारी वन हेल्थ मिशन के रूप में है, जहां हम ये मानते हैं कि मानव का स्वास्थ्य हो, पर्यावरण का स्वास्थ्य हो, पशु पक्षियों का स्वास्थ्य हो, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय हैं जो एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं ताकि हम पूरी तरीके से ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसको मजबूत रख सकें और आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हों।
0: जब COVID-19 की शंकाएं उठ रही थी, मेरा ख्याल है तभी हम पूरी तरह से तैयार थे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि हम उस आपदा से लड़ पाए और उससे बाहर निकल पाए।
1: देखिए, निश्चित रूप से COVID-19 के दौरान भारत ने न केवल अपने नागरिकों का ख्याल रखा बल्कि दुनिया की भी चिंता की।
0: जी,
1: ऐसे कठिन समय में हमने अपने 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाकर तैयार किए, हमने अपने करोड़ों नागरिकों को डबल डोज दिया, बूस्टर डोज दिया, 220 करोड़ टीकाकरण, ये आसान बात नहीं है, आसान लक्ष्य नहीं है। और यहां तक कि जब दुनिया के तमाम विकसित देश भी इसका डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दे पाए तो कोरोना वैक्सीनेशन का हमने अपने नागरिकों को डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया। और इसके साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की जो हमारी पहल थी, 100 से अधिक देशों के नागरिकों को भी हमने जरूरी जो दवाएं थी या इक्विपमेंट्स थे या टीके थे, ये हमने तमाम देशों के नागरिकों को भी पहुंचाए। तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने साथ साथ वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के तहत दुनिया की चिंता करता है और इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण हमने कोविड जैसी महामारी बहुत बड़े संकट के बीच में प्रस्तुत किया।
0: भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भी जाना जाता है और क्यों ना हो, आयुर्वेद की भूमि है। तो उस संदर्भ में, उस विषय में आज भारत की वैश्विक स्थिति कैसे मजबूत हो रही है?
1: देखिए, जहां तक फार्मा क्षेत्र की बात है तो भारत, अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो हम 3रे नंबर पे हैं, लेकिन अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो हम 14वें नंबर पे हैं। और दुनिया में भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है कि हम अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन्स जो हैं वो 200 से अधिक देशों को सप्लाई करते आए हैं। यूएस हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, तमाम देशों में हमारी जेनेरिक दवाइयां पहुंचती हैं जिनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है और दाम भी बहुत कम है। इसके साथ ही WHO की 70% जो वैक्सीन की मांग है उसकी आपूर्ति भी भारत का फार्मा सेक्टर करता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन इसके साथ ही हम आगे की जो नेक्स्ट फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल लीडरशिप है उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया में, जैसे मैंने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, डायबिटीज है, कैंसर है या ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, आज बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। NCDs का बर्डन दुनिया के तमाम देशों पे बहुत बड़ा बर्डन है। तो केवल जेनेरिक दवाओं में जो हमारी लीडरशिप है, अब हमें उस तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया के अंदर, अगर हम 2031 तक बात करें, तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होंगे

0: उसमें 60% जेनेरिक की मांग हो सकती है, लेकिन 40% जो मांग होगी वो बायोलॉजिक्स की होगी, बायोसिमिलर्स की होगी। तो अब हमें स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग से लार्ज मॉलिक्यूल इनोवेशंस की तरफ बढ़ना है, यानी जो हमारे वॉल्यूम लेड जेनेरिक्स हैं उनसे आगे बढ़ के अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए हमें जो वैल्यू लेड बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हैं उसको बनाने का काम करना है। और इस दिशा में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ के बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की बजट में, और उसके तहत आज फार्मा सेक्टर में हमारी जो कंपनीज हैं वो कैसे जेनेरिक से आगे बढ़कर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, ये जो नए इनोवेशन ड्रग्स हैं, इसका जो एक नया मार्केट उभर रहा है और इसकी जो मांग बढ़ रही है, इस दिशा में आगे बढ़े ऐसा प्रोत्साहन हम दे रहे हैं।
1: चर्चा तो और भी की जा सकती है लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा, तो जाते जाते आपसे बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2030 तक हेल्थ केयर के एरिया में ऐसे कौन से गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और आखिर में भारत के नागरिकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: देखिए, भारत तेजी से काम कर रहा है, टीबी मुक्त भारत बनाना है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे अगर आप देखिए तो वैश्विक स्तर पे जो मैटर्नल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, या जो इन्फेंट मोर्टैलिटी, अंडर 5 मोर्टैलिटी या नियोनेटल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, उससे कहीं ज्यादा तेज गिरावट भारत के अंदर है। तो हमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य पे और बेहतर काम करना है। इसके साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है, गैर संचारी रोगों का, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी तेजी से चल रही है। और आगे की भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ मिशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के मॉडल्स को भारत एक्सप्लोर कर रहा है। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें हम प्राप्त करें, इसमें हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी श्रोता आज हमें सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूंगी कि भारत सरकार को जो प्रयास करना है, राज्य सरकारों को जो प्रयास करना है, हम पूरी तरह कर रहे हैं, लेकिन हर नागरिक को माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी बनाना है। और इसके लिए जरूरी है साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखें, हमारी हवा साफ हो, हमारा पानी साफ हो, हम संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार लें, मौसमी आहार लें, तेल नमक चीनी का सेवन कम रहें, और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ से, नशे के सेवन से अपने आप को, तंबाकू हो, सिगरेट हो, पान, बीड़ी, मसाला, शराब, इन सब से हम दूर रहें। योग, व्यायाम, किसी भी प्रकार के खेलकूद को अपने जीवन का अंग बनाएं। और सबसे बड़ी बात कि हम नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। मुझे लगता है कि सभी नागरिक यदि इस प्रकार के जीवन शैली का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भारत, और स्वस्थ भारत के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 का सपना जरूर पूरा होगा।
1: आज के दिन हमारे जीवन में योग एक अहम भूमिका निभा रहा है, और जैसा आपने बताया आरोग्य मंदिरों में भी योगा की शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो योग के माध्यम से इंटरनेशनल योगा डे के रिलेशन में आप हमारी ऑडियंस को, आप हमारे श्रोताओं और से क्या कहना चाहेंगे?
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब बहुत निकट है। 21 जून को देश में करोड़ों लोगों को हम योग करते हुए देखेंगे, और मुझे गर्व होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक बार पुनर्जीवित किया है। न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिक आज योग के फैन हो चुके हैं। मैंने भी कई देशों की यात्रा की है और हर जगह मैंने देखा है कि योग को लेकर लोगों का एक जबरदस्त क्रेज है। और हमारे देश के सभी नागरिकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि बीमारियों से मुक्त रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, इसके साथ साथ अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें तो जरूरी है कि योग का हम पालन करें, क्योंकि योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहता है। बहुत सारे तनाव जो आजकल के दौड़ते भागते जीवन में हैं उनसे हमें मुक्त रखता है। और मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से योग हमें एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए, और जीवन के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए वो हमें योग के माध्यम से मिल सकती है। तो अधिक से अधिक लोग योग करें, और योग आपको निरोग भी रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा।
1: स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है योग करना, और साथ ही साथ पौष्टिक आहार,
0: बिना खर्च का तरीका है योग।
1: व्यायाम और पौष्टिक आहार हमारी जरूर मदद कर सकता है स्वस्थ रहने में और खुश रहने में, और पहले स्वास्थ्य फिर कुछ और। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी आज हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे श्रोताओं और दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाजत।

0: और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में. शुक्रिया.
1: इन स्पेशल सीरीज 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट यू वर लिसनिंग टू एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद अनुप्रिया पटेल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑन हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स एंड अचीवमेंट्स. द इंटरव्यूअर वॉज निहारिका भुवानिया. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार. साक्षात्कार कर रही थी निहारिका भुवानिया. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.
3: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है. इस समय रात्रि के 8:32 हुए हैं. अब सुनते हैं रोजगार समाचार.
4: लीजिए अब सुनिए रोजगार समाचार. अंडमान एवं निकोबार पुलिस में ग्रुप बी अराजपत्रित एवं ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है. ये पद अंडमान एवं निकोबार पुलिस की विभिन्न इकाइयों में है. अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवारों द्वारा चुना गया पद अंतिम होगा. बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं किया जाएगा. शारीरिक माप एवं सहनशक्ति परीक्षण PMET अंडमान एवं निकोबार पुलिस द्वारा विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा. ये केवल क्वालिफाइड प्रकृति का होगा. लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित या लिखित अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित होगी. साथ ही ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा. सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी और उनके मूल दस्तावेजों का सत्यापन होगा. अंतिम परिणाम लिखित परीक्षा और ट्रेड टेस्ट के लिए प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा. भर्ती प्रक्रिया निर्धारित नियमों और पुलिस विभाग के आदेशों के अनुसार होगी. पुलिस रेडियो ऑर्गेनाइजेशन PR अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी अराजपत्रित में रेडियो ऑपरेटर ASI के लिए कुल पद है 71, 36 पद अनारक्षित वर्ग के लिए, 24 पद OBC वर्ग के लिए होगा. अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 4 पद रखा गया है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 7 पद है. रेडियो टेक्नीशियन ASI के लिए कुल पदों की संख्या है 12, 6 पद अनारक्षित वर्ग के लिए, 4 पद OBC वर्ग के लिए होगा तथा अनुसूचित जनजाति आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 1-1 पद है. सिपर ऑपरेटर ASI के लिए कुल पद है 2, अनारक्षित वर्ग और OBC वर्ग के लिए 1-1 पद रखा गया है. ग्रुप सी में फिटर इलेक्ट्रीशियन HC केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है. कुल पदों की संख्या 4 रखा गया है. अनारक्षित वर्ग और OBC वर्ग के लिए 2-2 पद है. कांस्टेबल VHF ऑपरेटर पद के लिए 1 पद है जो अनारक्षित वर्ग के लिए है. डीजल मैकेनिक

0: केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए होगा। कुल पद है 2। अनारक्षित वर्ग और ओबीसी वर्ग के लिए एक एक पद रखा गया है। फॉलोअर मैसेंजर के लिए पदों की संख्या है 16। अनारक्षित वर्ग के लिए 9 पद, ओबीसी वर्ग के लिए 6 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 1 पद है। पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट पीएमटी अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी, सब इंस्पेक्टर पीएमटी पद के लिए कुल पदों की संख्या है 2, जो ओबीसी वर्ग के लिए है। ग्रुप सी डीलिंग असिस्टेंट एचसी और स्टोर कीपर एचसी के लिए एक एक पद रखा गया है, जो अनारक्षित वर्ग के लिए है। असिस्टेंट मैकेनिक पीसी के लिए 2 पद हैं। अनारक्षित और ओबीसी वर्गों के लिए एक एक पद है। मैकेनिक हेल्पर पीसी पद के लिए 2 पद हैं, जो अनारक्षित वर्ग के लिए है। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए पदों की संख्या है 15। अनारक्षित और ओबीसी वर्गों के लिए 7-7 पद हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद है। पुलिस मैरीन फोर्स पीएमएफ अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी अराजपत्रित सब इंस्पेक्टर मास्टर के लिए कुल पद है 2। अनारक्षित और ओबीसी वर्गों के लिए एक एक पद है। ग्रुप सी पुलिस कांस्टेबल ग्रीजर के लिए कुल पद है 4। ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 2-2 पद रखा गया है। पुलिस कांस्टेबल लस्कर के लिए 7 पद कुल है, 3 पद अनारक्षित वर्ग के लिए। ओबीसी और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए एक एक पद रखा गया है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद है। रिक्तियां अस्थाई है जो बदल सकती है। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। कुछ पद केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है। एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण सरकारी नियमों के अनुसार होगा। ईडब्ल्यूएस एमएसपी ईएसएम भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण लागू है। भूतपूर्व सैनिकों को अपना नाम संबंधित बोर्ड में पंजीकृत कराना होगा। रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन प्रत्येक पद के लिए नियुक्ति पत्र योग्यता क्रम के अनुसार लागू किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने आवेदन अंडमान एवं निकोबार पुलिस की वेबसाइट police.andamannicobar.gov.in या e-recruitment.andamannicobar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन जमा करने से पहले भर्ती सूचना को ध्यान पूर्वक पढ़ें।
1: ऑनलाइन आवेदन 10 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अंडमान एवं निकोबार पुलिस की वेबसाइट police.andamannicobar.gov.in या e-recruitment.andamannicobar.gov.in पर उपलब्ध है और अधिक जानकारी के लिए 25 अप्रैल 2026 का द डेली टेलीग्राम देखा जा सकता है। ये थे रोजगार समाचार। श्रोताओं, अब सुनते हैं चंद देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप देशभक्ति गीत सुन रहे थे। एक आवश्यक सूचना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों 31 जुलाई 2026 तक की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://award.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। ये थी आवश्यक सूचना। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में समाचारों का प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलानबटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला, बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में LPG सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है।

0: हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मॉनसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मॉनसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मॉनसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपेई सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4था सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
1: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया च्वालिन्स्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नम्बर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के

में अप्रैल माह से प्रारंभ तीन कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला। आलेख आनंद श्रीवास्तव का है, प्रस्तुत करता है नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला।

0: लेकर नए भारत की उपलब्धियों तक आकाशवाणी ने हर महत्वपूर्ण पल को देश तक पहुंचाया है।
1: Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
2: दौर बदला, तकनीक बदली और बदल गया सूचनाओं का संसार, लेकिन इस बदलते हिंदुस्तान में जो नहीं बदला वो है देश की एक बुनियादी धड़कन, एक ऐसी आवाज जिसने सुबह की पहली चाय से लेकर रात के सन्नाटे तक हर भारतीय के घर में दस्तक दी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए।
0: क्या आपने कभी सोचा है कि देश दुनिया के कोने कोने से आप तक पहुंचने वाले इन सटीक समाचारों के पीछे कितनी बड़ी तपस्या होती है? आकाशवाणी समाचार की रीढ़ हैं इसके दो सबसे बड़े पावर हाउस, जीएनआर यानी जनरल न्यूज रूम और एचएनआर यानी हिंदी न्यूज रूम।
2: सुबह का समाचार प्रभात हो, दोपहर समाचार हो या फिर दिन भर की खबरों को समेटे समाचार संध्या, इन तीन मेजर हिंदी और तीन मेजर अंग्रेजी बुलेटिन को तैयार करने के लिए 2400 घंटे डेस्क पर शब्दों को तराशा जाता है, तथ्यों को परखा जाता है, क्योंकि यहाँ रफ्तार से ज्यादा जिम्मेदारी मायने रखती है। आकाशवाणी समाचार के वरिष्ठ सलाहकार उमेश चतुर्वेदी,
4: आकाशवाणी चूंकि सार्वजनिक प्रसारक है तो किसी निजी मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया आउटलेट्स या मीडिया संस्थान की तुलना में इसकी भूमिका कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण और कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। इसलिए यहाँ इस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जो भी हम सूचना दें वो सही हो और सटीक हो, उसकी तथ्यात्मकता पर, उसकी प्रामाणिकता पर कोई सवाल न उठे। तो इसलिए जब तक कोई न्यूज, कोई भी समाचार विश्वस्त सूत्रों से सही न साबित हो जाए या न मान लिया जाए कि ये बिल्कुल सही सूचना है, सही जानकारी है, सही समाचार है, तो उसे प्रसारित करने के लिए सिस्टम में नहीं डाला जाता। जैसे मैं हाल ही में अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई उसका उदाहरण देते हुए कहूँगा, मैं उस समय हिंदी न्यूज रूम में खुद था तो उस समाचार को देने में हमने देर नहीं लगाई, लेकिन उस तेजी में भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि हम जिस सूचना को देने जा रहे हैं अपने जो देश के, बल्कि अब तो इंटरनेट के मार्फत पूरी दुनिया में हमारे श्रोता हैं, एक भी गलत सूचना न जाए। 2400 घंटे यहाँ डेस्क काम करता रहता है, रिपोर्टर भी काम करते रहते हैं जो हमारे देश भर में संवाददाता फैले हुए हैं, और वो संवाददाता भी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि किसी भी कीमत पर गलत या भ्रामक समाचार या सूचना किसी भी समाचार केंद्र पर न पहुंच पाए। और एक चीज़ और है कि सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और भारत का सार्वजनिक प्रसारक होने के नाते आकाशवाणी ने एक व्यवस्था कर रखी है, बहुत सारे शब्दों को इसने डीबार मतलब उनसे परहेज किया है। एक शब्दों के लिए शब्दावली अलग से तैयार की गई है आकाशवाणी के लिए, और चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे देसी भाषाओं के प्रसारण के लिए जो शब्दावली है या बोलियों के लिए, सबके लिए डूज और डोंट मतलब क्या करें और क्या न करें, इसकी बाकायदा शब्दावली तैयार करके रखी गई है, सूची बना करके रखी गई है। और न्यूज में

0: कुछ खास तरह से इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए कई बार जो बाहरी व्यक्ति, जो सामान्य पत्रकार हो, अगर आकाशवाणी के अंग्रेजी या हिंदी न्यूज़ रूम में आ जाए या किसी और भाषा के न्यूज़ रूम में आ जाए, समाचार कक्ष में आ जाए, तो उसको देख कर ताज्जुब भी होगा कि कई बार कुछ शब्दों पर बहस होती है। हो सकता है कि उसमें कुछ देर हो जाए प्रसारण में, लेकिन गलत शब्द, गलत तथ्य न जा सके, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है।
1: आज टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के कई दिग्गज एंकर्स के अनुभव का खजाना इसी आकाशवाणी के स्टूडियोज में गढ़ा गया है। इन्हीं में से एक बेहद सम्मानित नाम है अंग्रेजी के मशहूर एंकर और न्यूज रीडर सुनीत टंडन। आइए सुनते हैं उनकी सफर की कुछ अनसुनी यादें।
2: As far as the news is concerned, the people who were in the greats who were
3: समाचारों की बात करें तो उस समय समाचार कक्ष में कई बड़े नाम मौजूद थे। इनमें सुरजीत सेन, बोरुल हालदार, मणिका रत्नम और पामेला सिंह काफी बड़े नाम थे। ये उस समय के सबसे बड़े न्यूज रीडर हुआ करते थे और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत अच्छे इंसान भी थे और दूसरों को बहुत प्रेरित किया करते थे। मैंने 1978-79 में समाचार कक्ष में समाचार पढ़ने की शुरुआत की। उस समय बोरुल हालदार हुआ करते थे, एक और न्यूज रीडर हुआ करते थे सुशील, जो काफी लोकप्रिय थे। वो अपनी स्क्रिप्ट में पंक्चुएशन की मार्किंग नहीं किया करते थे और जब लाइव पढ़ते थे तो जो लाइन पढ़ रहे हैं उसके नीचे की तीसरी लाइन में आकर वो मार्किंग किया करते थे। एक अनूठी शैली थी उनके पास। हिंदी समाचार कक्ष की बात करें तो महान देवकीनंदन पांडे जी हुआ करते थे, एक और सज्जन हुआ करते थे जो सफेद कुर्ते पजामे में आया करते थे, मिस्टर भादुड़ी। वो बहुत अच्छे उद्घोषक थे उस जमाने में।
2: This gentleman was always dressed in his crisp white kurtas. So wonderful people and great memories of that time.
1: वक्त के साथ आकाशवाणी समाचार ने सिर्फ बुलेटिन ही नहीं बदले, बल्कि जनसंचार के स्वरूप को नया आयाम भी दिया। शुरुआत हुई न्यूज मैगजीन कार्यक्रमों की, सुबह की ताजगी के साथ आज सवेरे और शाम के ढलते सूरज के साथ परिक्रमा।
4: इन कार्यक्रमों ने देश के सुदूर इलाकों में बैठे क्षेत्रीय संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट्स और संक्षिप्त रेडियो इंटरव्यूज के जरिए सीधे जनता की आवाज को स्टूडियो तक पहुंचाया, चाहे आम बजट हो या रेलवे बजट की पल पल की बारीकियां, लाइव डिस्कशन प्रोग्राम्स हो या फिर देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतगणना।
1: जब टीवी स्क्रीन्स नहीं थी तब देश का कोना कोना आकाशवाणी के साथ बैठकर चुनावी नतीजों के लाइव रुझान सुनता था। भरोसा ऐसा कि कोई उंगली नहीं उठा सकता था। इन कार्यक्रमों को शुरुआती दौर से अपनी आवाज से सजाने वाली और लंबे समय तक इनका संचालन करने वाली चंद्रिका जोशी इन ऐतिहासिक लाइव कवरेज के साथ उन रोमांचक क्षणों को याद करते हुए कहती हैं,
5: सबसे पहली चुनाव चर्चा रेडियो पर 1996 में हुई। बिल्कुल नया फॉर्मेट था, नया अंदाज, लोगों की और हमारे अधिकारियों की अपेक्षाएं थी, तो डर तो बहुत लगता था, घबराहट भी होती थी। लेकिन हाँ, उस समय ईवीएम नहीं होती थी तो देश भर से चुनाव परिणाम मिलने में करीब 2-2.5 दिन का समय तो लगता ही था और बड़ा उत्सव का सा माहौल रहता था ऑफिस में। बजट की चर्चा भी उसी दौर में शुरू हुई। तब आम बजट और रेल बजट अलग अलग आते थे। एक दो बार तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बजट के तुरंत बाद रेल मंत्री और वित्त मंत्री जी से पहला इंटरव्यू हमने लिया था आकाशवाणी ने। बजट के बाद रात को रेडियो ब्रिज कार्यक्रम में सभी सेक्रेटरीज और पत्रकारों के साथ चर्चा के वो पल कभी नहीं भूलने वाली यादें हैं। रेडियो की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, समाचारों का भरोसा, हमारी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए श्रोताओं की मांग पर ये सब बदलाव हो रहे थे और आकाशवाणी ने हमें नया करने के लिए बहुत मौके भी दिए। तो हम नौकरी में आने के बाद भी बहुत पढ़ते थे क्योंकि श्रोताओं का विश्वास जीतने के लिए आवाज़ के साथ साथ आपके भीतर का आत्मविश्वास उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास तभी होगा जब आप हर वक्त हर समाचार से अपडेट रहेंगे, आपकी भाषा समृद्ध होगी और उच्चारण स्पष्ट होगा। तो हमने आकाशवाणी को आगे बढ़ते हुए, समृद्ध होते हुए देखा। पुरानी मशीनों और टेप में रिकॉर्डिंग और एडिटिंग, उसके बाद सीडी, फिर कंप्यूटर, ये सब दौर थे और सबका अपना अनुभव रोचक रहा।

0: मैं कहूंगी कि 24 घंटे काम करने वाली इस जगह को अगर उस वक्त को समझना चाहें तो रुक कर कुछ पीछे तो देखना ही पड़ेगा। शायद 80 के दशक तक रेडियो में लोगों के सामने बहुत चुनौतियां रही होंगी। हम लोग 90 के दशक में काफी सुधार होने के बाद आए, लेकिन असल बात ये थी कि रेडियो की लोकप्रियता तब भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी हमेशा रहेगी, क्योंकि रेडियो आपको अपना काम करने देता है।
1: जब बात राष्ट्रीय गौरव की हो, 15 अगस्त और 26 जनवरी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का वो आंखों देखा हाल, तो हमारे कानों में कई बुलंद जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें गूंजती हैं।
2: उनकी कमेंट्री महज शब्दों का बयान नहीं थी, वो साक्षात दृश्य को श्रोताओं की आंखों के सामने जिंदा कर देती थी।
3: नमस्कार, राजपथ से मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, अपनी साथी कमेंटेटर डॉक्टर ऋतु राजपूत, जैनेन्द्र कुमार सिंह और मीनू खरे के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के इतिहास का एक अनमोल दिन।
4: हर हंसी ख्वाब की ताबीर हंसी लगने लगी, एक नई सुबह ने धरती को संवारा। ऐसे
3: दो मिनट के मौन के बाद राउस के धुन अर्थात पुनः आगे बढ़ चलने का संकल्प, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प।
4: दाहिनी ओर जो एक गेट बना हुआ है अर्धवृत्ताकार, उससे प्रवेश किया है प्रधानमंत्री जी ने।
5: और अब योग फॉर्मेशन का प्रदर्शन, यहाँ पर 6 सदस्यीय टीम कर रही है और गुलदस्ता खूबसूरत सा फूलों का, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए ये जाबाज यहाँ से सलामी मंच से आगे निकलते हुए।
1: आकाशवाणी सिर्फ जश्न का साथी नहीं है, संकट की घड़ी में ये एक अपने की भूमिका निभाता है। जन संचार में इसकी भूमिका सिर्फ सूचना देने की नहीं, बल्कि एक मरहम लगाने वाले हमदर्द की भी रही है।
2: याद कीजिए बिहार की वो भयावह बाढ़, जब सब कुछ डूब चुका था, संचार के सारे साधन लगभग ठप थे, तब आकाशवाणी ने वहां एक ऐसा इंतजाम किया जिससे बाढ़ राहत, अपनों की तलाश और मदद की जानकारियां हर पीढ़ी तक पहुंचाई जा सके। इस मानवीय और रणनीतिक भूमिका पर रोशनी डाल रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व अपर महानिदेशक आशीष भटनागर।
6: आईटी डिवीजन के अपने एक साथी वीआर हरी से हमने कहा, शायद गुरुवार या शुक्रवार था, कि हमें सोमवार को बिहार जाना है और हमें चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा आईटी प्लेटफॉर्म जिसपे कि बहुत सारे लोग एसएमएस करें, वो सारे एसएमएस आए, वहाँ इकट्ठे हों, उसको फिल्टर हम अलग अलग ढंग से कर सकें और उसको हम फोन इन प्रोग्राम से जोड़ सकें और फोन इन प्रोग्राम के तहत हम जनता तक पहुँच सकें। एक तरीके से ये टेलीकॉम, आईटी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग तीनों की साझेदारी थी। इस दौरान हम अपने डायरेक्टर जनरल महोदय जयजी जयलाल जी के पास गए और उन्होंने बहुत उत्साहित होकर कहा कि तुम जाओ, मेरा पूरा सहयोग तुम्हारे साथ है, तुम जो चाहो वो करो। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 15 दिन वहां रहेंगे, आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी भागलपुर और आकाशवाणी दरभंगा, इन 3 स्टेशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। उसके बाद तो पूरे स्टेशन के लोग, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे प्रोग्रामर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के, सब साथ आके खड़े थे। और वहां से शुरुआत हुई हमारी बात की। कैजुअल अनाउंसर्स की ताकत मैंने तब देखी, मुझे याद है मणिकांत झा नाम आज भी, हम लोग बोट्स के ऊपर, हर जगह पानी पानी था, दूर दूर जाते थे, कहीं थोड़ी सी जमीन दिखती थी वहां बहुत सारे लोग खड़े मिलते थे, और जैसे हम पास पहुंचते थे तो एकाएक वहां पे चीख चिल्लाहट, अरे मणिकांत झा आइल छ, मणिकांत बाबू आए हैं। हमको इतना गर्व हुआ अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर एक बच्चा टंगा हुआ मिला और कितने दिन वो पेड़ पे रहा, वो उसको कुछ हौसला देकर उससे बात हुई, उसकी बात की और रेडियो पर उस फोन इन प्रोग्राम पे ब्रॉडकास्टिंग किया गया उसके बारे में और उसके परिवार उसे मिल गया। इट वॉज एन इमोशनल अफेयर। एसएमएस का जो प्लेटफॉर्म, उस पर तमाम सारे लोग एसएमएस करते थे, मेरा बच्चा गुम गया है, मेरा पति गुम गया है, मेरी पत्नी नहीं है, बह गई है, उन सब एसएमएस को लेके हम लोग फोन इन प्रोग्राम पर बात करते थे और फिर लौट के हमारे पास एसएमएस या फोन आ जाते थे, अरे वो हमको वहां मिल गया। बाद में भारतवर्ष में 13 महत्वपूर्ण जो काम जो किए गए उस भारत सरकार के पब्लिक

0: एशियन में भी लाई गई। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, इसके बारे में आर्टिकल्स लिखे गए। पर सच बताऊं तो इसका असली आनंद हम लोगों को मिला, वो फील्ड पे मिला। आकाशवाणी कितना मददगार है, जब कोई नहीं होता तो आकाशवाणी होता है।
1: नब्बे वर्षों का ये सफर गवाह है कि तकनीक के इस आधुनिक समंदर में, जहां आज सैकड़ों टीवी चैनल्स हैं, हजारों डिजिटल पोर्टल्स हैं और हर सेकंड खबरों के रील्स और शॉर्ट्स बदल रहे हैं, उस शोरगुल के बीच भी आकाशवाणी समाचार आज भी देश का सबसे शांत, सबसे गंभीर और विश्वसनीयता के शिखर पर बैठा अव्वल संस्थान है।
2: ये आज भी केवल एक ब्रॉडकास्टर नहीं बल्कि भारत की साख है। सोशल मीडिया के फेक न्यूज के दौर में भी देश इसी आवाज की तरफ देखता है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर इस आवाज ने मुहर लगा दी तो वो सच है।

0: आकाशवाणी एट 90
1: 90 वर्षों का गौरवमयी सफर। आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें और सूचनाएं ही नहीं दी, बल्कि उसने आजाद होते भारत के सपनों को अपनी आवाज दी। और जब बात खेलों की आई तो एक नई सोच का जन्म हुआ,
2: एक ऐसी सोच जिससे खेल के मैदान को स्टेडियम की चार दीवारी से निकालकर भारत के हर घर हर चौपाल तक पहुंचाया, बिना तस्वीरों के, सिर्फ शब्दों के जादू से करोड़ों आंखों के सामने लाइव मैच का थिएटर रच देना। ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ने किया।
1: 60, 70 और 80 का दशक, ये वो दौर था जब भारतीय हॉकी अपने चरम पर थी। आइए इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलटते हैं और चलते हैं साल 1975 के क्वालालंपुर में, जहां भारत ने हॉकी विश्व कप जीतकर इतिहास रचा था। सुनिए जसदेव सिंह की उस जादुई आवाज को।
3: और ये फ्री हिट 25 गज की लाइन पर दाएं फ्लैंक में मिला पाकिस्तान के इफ्तिखार को, जिन्होंने हिट लगाया पास अख्तर रसूल को, अख्तर रसूल ने, और गेंद भारत के डी में बाईं तरफ जहां पे वो चौकर ने वहां पे पहुंच गया अब्बास भारतीय डी में, और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने डी में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में, और ये खेल खत्म। भारत 2-1 से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। ये समाचार मैं मेलविल डिवेलो के साथ आपको कुआलालंपुर से देता हूं।
2: हॉकी के मैदान से निकलकर जब ये रोमांच 22 गज की क्रिकेट पिच पर पहुंचा, तो आकाशवाणी ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। वो दौर जब अंग्रेजी का बोलबाला था, आकाशवाणी ने देश की माटी की भाषा यानी हिंदी में क्रिकेट कमेंट्री की शुरुआत करने की नई सोच दिखाई।
1: और इस विधा के भीष्म पितामह बने सुशील दोषी।
4: बहुत ही मुश्किल काम था जो FPS सिस्टम का खेल क्रिकेट, जिसको 22 यार्ड से यानी 22 गज से जो शुरू होता है, ऐसे खेल की हिंदी में कमेंट्री करना, लोग मान रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता। लोग कह रहे थे कि पूरा हिंदी में करना हो तो अनुवाद करिए, स्क्वायर लेग को वर्गाकार पांव कहिए, या फिर मिड विकेट को मध्य विकेट कहिए, या फिर सिली मिडॉन को मूर्ख मिडॉन कहिए। इस तरह की बातें होती थी और लोग ग्रहण करना शुरू में नहीं चाहते थे। लेकिन मैं तो आकाशवाणी को बहुत ही मानता हूँ कि उन्होंने खेलों को अपने प्रसारण के जरिए जिंदा रखा। दो काम किए, एक तो खेलों को गांव-गांव तक पहुंचाया, गृहिणियों तक पहुंचाया, खेत खेत में काम करने वाले जो खेतीहर किसान हैं उन तक पहुंचाया, मिल में मजदूर जो लोग काम करते हैं ना उन तक पहुंचाया, और सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों को खेल को दिखाया अपनी आवाज के जरिए जो खेलों के बारे में जानते नहीं थे। तो खेल की शुरुआती क्रांति की शुरुआत

0: मैं समझता हूँ आकाशवाणी के कारण हुई। और दो बातें हुई कि खेलों को तो पहुंचाया पर साथ ही एक संस्कार, भाषा का संस्कार जो दिया आकाशवाणी ने, वो एक उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। देखिए आज तरह तरह की बातें हो रही है, इतने सारे टेलीविजन पर हम देखते हैं जिस तरह की भाषा तोड़ी जा रही है, उससे बड़ा दुख भी होता है, लेकिन आकाशवाणी ने इसके साथ कभी समझौता नहीं किया। क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के जो चाहने वाले हैं वो भी आकाशवाणी का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि आकाशवाणी ने वो काम किया जो संजय ने महाभारत में जो काम किया था। रेडियो ही एकमात्र माध्यम था, मुझे याद है कि एक पान वाले की दुकान के आगे 500 लोग खड़े हो जाते थे और पूरी बातें सुनते थे। खेलों की जो क्रांति आकाशवाणी ने जो काम किया उसका ये देश शुक्रगुजार तो रहेगा ही, लेकिन उनका कर्तव्य भी था, उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरे ढंग से निभाया।
1: आकाशवाणी की इस कमेंट्री की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसने सिर्फ खेल को घर घर पहुंचाया ही नहीं, बल्कि देश में खेल के प्रति एक ऐसी दीवानगी पैदा की जिसने नए टैलेंट को जन्म देना शुरू किया।
2: कुछ ऐसे दीवाने श्रोता भी थे जो रेडियो सुनते सुनते खुद इस विधा के उस्ताद बन गए। ऐसा ही एक नाम है कुलविंदर सिंह कंग।
3: मैं 1980 में आकाशवाणी में आया, उससे पहले मुझे याद है सन 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक जो कि कनाडा में था, उसका फाइनल मुकाबला रात के तकरीबन 2:30 बजे मैंने आकाशवाणी पर सुना। उस वक्त मैं श्रीगंगानगर में था क्योंकि कनाडा में उस वक्त दिन था, भारत में रात थी, और फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था और पहली बार और एकमात्र बार न्यूजीलैंड ने उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये जो ऐतिहासिक पल आकाशवाणी ने दिए हैं, मैंने भी उसको जिया है और उसके बाद मुझे भी आकाशवाणी की तरफ से उन ऐतिहासिक पलों की कमेंट्री करने का मौका मिला जो कि आज इतिहास में दर्ज हैं। चाहे वो मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग के 300 रन बने हों, पहले भारतीय बैटर बने, और वो 300 रन उन्होंने मेरी कमेंट्री में ही सकलन मुश्ताक को मिड विकेट पर छक्का मारकर पूरे किए थे। मुझे याद है 13 जुलाई 2002 नटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल लॉर्ड्स के मैदान पर, जहां भारत ने 326 रन बनाए थे, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की साझेदारी के बाद भारत वो जीता था। मुझे अंग्रेजी कमेंटेटर सुरेश सरैया जी के साथ उस मैच का लॉर्ड्स के मैदान से आंखों देखा हाल सुनाने का मौका मिला था। ये वो बातें हैं, वो पल हैं जिसका कि मैं हिस्सा बना।
2: आकाशवाणी का योगदान सिर्फ लाइव मैचों तक सीमित नहीं रहा। खेल खिलाड़ी, खेल सेवा, स्पोर्ट्स कैन या 5 मिनट के खेल बुलेटिन, ये वो कार्यक्रम रहे जिन्होंने खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर को देश के कोने कोने तक पहुँचाया।
1: इन कार्यक्रमों में बतौर प्रेजेंटर और एक्सपर्ट जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडल जीतने जैसा था। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के जाने माने नाम मलय नीरव अपना अनुभव कुछ यूं साझा करते हैं।
4: अगर मैं याद करूं कुछ चीजें, तो जिस आकाशवाणी को सुनते हम बड़े हुए थे, जिन जो बड़े नाम हमारे सामने थे, जसदेव सिंह, रवि चतुर्वेदी, मनीष देव, सुशील दोषी, सुरजीत सेन, सुरेश सुरैया, ये वो लोग थे जिनसे मुझे मिलने की बचपन से ही बड़ी तमन्ना थी। और बाद में मुझे कहते हुए बहुत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि जसदेव सिंह के साथ जैसे कि मैंने कार्यक्रम पेश किया, रवि चतुर्वेदी के साथ मैंने एक्सपर्ट कॉमेंट्स में कई बार हिस्सा लिया। तो मैं अगर आकाशवाणी की यात्रा, खेल यात्रा पर नजर डालूं, तो 1964 में पहली बार जब हॉकी ओलंपिक्स में हॉकी की कमेंट्री हुई जिसमें डिमेलो और जसदेव सिंह थे, उसके बाद क्रिकेट कमेंट्री आई और फिर नरोत्तमपुरी का जमाना आया, डिकी रत्नागर, और सबसे पहले तो तलियार खान साहब थे जिन्होंने कमेंट्री की परंपरा शुरू की। तो इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। आकाशवाणी के जो खेल कार्यक्रम होते थे, खासकर स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम, जिसमें दिन भर के खेल खबरों का लिखा जोखा रहता था, तो ये आकाशवाणी का एक ऐसा योगदान है जो मुझे कहते हुए बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्थान, मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मैं अपने समाचार संस्थान का नाम ले सकता हूं, बीबीसी में भी हम लोग हमेशा आकाशवाणी के खेल कार्यक्रम पर नजर रखा करते थे।
1: सिर्फ क्रिकेट या हॉकी ही क्यों, एशियन गेम्स का रोमांच हो, राष्ट्रमंडल खेलों में तिरंगे का शान से लहराना हो, या फिर खेलों का महाकुंभ ओलंपिक, आकाशवाणी ने हर पल को देश के साथ जिया है।
2: निशानेबाजी जैसे खेल जिन्हें लंबे समय तक आम दर्शकों से

0: दूर माना जाता था। उसकी बारीकियों को, उसके नियमों को और खिलाड़ियों के संघर्ष को आकाशवाणी ने सीधे श्रोताओं के दिलों तक उतारा। पूर्व ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता अंजलि भागवत यादों को कुछ इस तरह साझा करती हैं।
1: आकाशवाणी बचपन से हमारा रूटीन का एक हिस्सा रहा है। मेरी माँ पहले आकाशवाणी सांगली केंद्र में गाया करती थी, तो सुबह उठते ही पहले ही सारे गाने हम सुनते थे। बहुत अच्छा लगता था वो माहौल, घर का सुबह का बनना। 88 वॉज माई फर्स्ट नेशनल, तो तब तो ऐसे कोई इतने सारे चैनल्स और वो कुछ नहीं था, तो आकाशवाणी यही हमारे प्रोमिनेंट चैनल्स थे। तो तब बहुत सारी मेरी इंटरव्यूज आकाशवाणी में हुई है। मैं आकाशवाणी केंद्र वर्ली में बहुत बार जा चुकी हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ जाने की और जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की, क्योंकि आकाशवाणी ऐसा माध्यम था उस वक्त जो हर घर तक पहुँचता था। जो भी मेरा शुरुआत का जो अचीवमेंट्स है वो लोगों तक पहुंचने में या लोगों तक पहुंचने के बाद शूटिंग लोगों को पता चलने में आकाशवाणी में, मतलब मैं उनको क्रेडिट देती हूँ या उनका बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये खेल बहुत नया था हमारे वक्त।
0: आज का दौर खेलो इंडिया गेम्स का है, नेशनल गेम्स का है। आज भी जब देश का कोई खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाता है तो आकाशवाणी अपनी रेडियो रिपोर्ट्स, पल पल की अपडेट्स और पॉडकास्ट के माध्यम से देश के करोड़ों खेल प्रेमियों को उस रोमांच से जोड़े रखता है।
2: समय आगे बढ़ता है, पीढ़ियां बदलती हैं, तकनीक नए रास्ते बनाती है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ और गहरी होती जाती हैं। आकाशवाणी की आवाज भी एक ऐसी ही विरासत है जिसने देश को खबरों से जोड़ा और खेलों के रोमांच को घर घर पहुंचाया। कभी किसी ऐतिहासिक समाचार की गूंज बनकर, तो कभी आखिरी गेंद तक सांसें थाम देने वाली कमेंट्री बनकर। आकाशवाणी के इन 90 गौरवशाली वर्षों का हार्दिक अभिनंदन।

रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ तीन कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला। आलेख आनंद श्रीवास्तव, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा और आनंद श्रीवास्तव, स्वरांश सहयोग आकाशवाणी संग्रहालय और प्रसार भारती संग्रहालय, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। Tonight we present a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri M.S.N. Murthy.
0: Sri M.V. Subbarayudu aur Srimati

0: एम जलजाक्षी के पुत्र श्री एम एस एन मूर्ति संगीत के परिवेश में ही पले बढ़े हैं। आपकी माता श्रीमती एम जलजाक्षी स्वयं एक संगीत कलाकार रही हैं। आपने संगीत की शिक्षा संगीत साहित्य कला निधि गुरु श्री एनसीएच कृष्णमाचार्युलु के पास प्राप्त की। बाल कलाकार के रूप में ही आपने अनेक मंचों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति ने कई प्रतिष्ठित संगीतज्ञों के साथ विभिन्न मंचों पर वायलिन संगत किया। इतना ही नहीं, आपके वायलिन एकल प्रदर्शन के लिए आपको समालोचक प्रशंसा भी प्राप्त है। आपने राष्ट्रीय एकता संगीत कार्यक्रमों के तहत हिंदुस्तानी संगीत कलाकारों के साथ जुगलबंदी कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। कई प्रतिष्ठात्मक संस्थानों ने आपकी कला को निदर्शनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन माना है। आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के पैनलबद्ध कलाकार भी हैं। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आकाशवाणी के स्टाफ कलाकार रह चुके श्री एम एस एन मूर्ति को वायोलिन में टॉप ग्रेड, कर्नाटक गायन और वायोला वादन में ए ग्रेड प्राप्त है। आपको कई प्रतिष्ठित मंचों द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आज के कार्यक्रम में श्री एम एस एन मूर्ति की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू और सहायक वायलिन पर श्री साकेत पंतुला।
1: श्री एम एस एन मूर्ति's एक्सपोजर टू म्यूजिक बिगैन अर्ली। His mother, Srimati M. Jalajakshi, is a veteran vocalist. Recognized as a child prodigy, Sri M. S. N. Murthy trained under the guidance of Sangeet Sahitya Kalanidhi, Sri NCH Krishnamacharilu. He served Akashvani Vishakhapatnam as a staff artist for 2 decades. A versatile musician, Sri M. S. N. Murthy has the rare distinction of having top grade in violin, A grade in vocal and an A grade in viola of Akashvani and Doordarshan. Sri M. S. N. Murthy's music is recognized for its amazing and silky smooth yet crisp and pure tonal quality, fine aesthetic sense and for the artist's total command over the instrument. He has performed Jugalbandi concerts in collaboration with Hindustani classical musicians and has accompanied almost all veteran Vidwans of yesteryears and most of the leading contemporary artists. An empaneled artist of Indian Council for Cultural Relations, Sri M. S. N. Murthy has performed extensively in the country and abroad, in various prestigious centers of art and culture, and many reputed organizations and universities across the globe. He has been the recipient of several prestigious awards for his contribution in the field of music. In tonight's performance, Vidwan Sri M. S. N. Murthy is accompanied by Vidwan Dr. Vankayala Venkata Ramana Murthy on the Mridangam, Vidwan Sri M. Haribabu on the Ghatam, and supporting violin is being provided by Sri Saket Pantula.
0: Vidwan Sri M. S. N. Murthy aaj ke karyakram ka aarambh kar rahe hain। अठाणा राग में पुरंदर दास की रचना सकल ग्रह बल नीने से, जो कि खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: श्री एम एस एन मूर्ति बिगिन्स दिस इवनिंग्स कॉन्सर्ट विद अ कृति ऑफ पुरंदर दास। इट इज एन अठाणा रागम खंड चापू तालम।

0: श्री एम एस एन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है अमृत वर्षिणी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना आनंद अमृत आकर्षिणी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री एम एस एन मूर्ति नाउ प्रेजेंट्स अ कृति ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार इन अमृत वर्षिणी रागम आदि तालम।

0: रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू और सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला। कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्री एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है हर हर प्रिया राग में संत त्यागराज की रचना चक्कनी राज मार्गमु, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन टुनाइट रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा यू हैव बीन लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति। ही इज अकम्पनीड बाय विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमन मूर्ति ऑन द मृदंगम एंड विद्वान श्री एम हरिबाबू ऑन द घटम। वायलिन सपोर्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड by Sri Saket Pantula. Continuing this evening's concert, Vidwan Sri MSN Murthy will now present Chakkani Raja Margamu. It is in Kharhara Priya Ragam Aditalam and is a composition of Saint Tyagaraja.

यह था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति ने और घटम पर विद्वान श्री एम हरि बाबू ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है खमास राग में धर्मपुरी सुब्बा रायर द्वारा रचित जावली मरुबारी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है। That was Tanyavartanam on the Mridangam by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Sri MSN Murthy concludes this evening's concert with Marubari, a javali of Dharmapuri Subbarayar. It is in Khamas Ragam Aditalam.

0: अभी तक आप रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायोलिन वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू, सहकार वायोलिन पर श्री साकेत पंतुला। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, वेर इन वी प्रेजेंटेड अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री MSN मूर्ति। ही वॉज अकम्पनीड बाय विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमन मूर्ति ऑन द मृदंगम एंड ऑन द घटम बाय विद्वान श्री M हरिबाबू। Violin support was given by Sri Saket Pantula. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
1: Medium wave 438.6 meter अर्थात 684 kHz और FM 100.9 MHz पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब सुनते हैं मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं के लिए कोई चेतावनी नहीं है, पर मछुआरों को चेतावनी दी जाती है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समुद्री तटों पर हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जिसके बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने की भी संभावना है। इसी कारण समुद्र अशांत रहेगा। मछुआरों को समुद्र में 9 तारीख तक न जाने की सलाह दी गई है। परसों तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। ये थी मौसम की जानकारी। इसके साथ ही हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 18वीं तिथि यानी 8 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:28.50 हुए हैं। हमारी पहली सभा में हम आप सभी श्रोताओं का अभिवादन करते हैं।